मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने ऊर्जा और व्यापार की आपूर्ति जारी रखने पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डॉ. जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर सिर्फ संबंधित देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और विकास प्रभावित होती है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा कि युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। डॉ. जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघर्ष समाप्त करने का आह्वान दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों के हमलों को भी अस्वीकार बताया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे दावों के आधार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। श्री नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार स्वाभाविक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत प्रचार का सहारा लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, उड़ीसा और तेलंगाना में भी आज बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रोक दी गई है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर आज भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीम के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला भी खेली जाएगी। एशियाई खेलों में स्क्वाश में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्वी शंकर, NC सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह मुकाबला करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। बैडमिंटन में PV सिंधु और भारतीय मिक्स जोड़ी पदक से 1 जीत दूर है। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी आज भारत को पदक की उम्मीद है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों को अस्वीकार्य बताया। आतंकवाद पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: A persistent threat to peace.
2: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
1: In particular, should be exposed and should be countered.
0: श्री जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के सामने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से संबंधित बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि भारत 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हर देश को अपनी जरूरतों के अनुसार AI विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
3: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
4: तमिलनाडु देश के प्रमुख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME राज्यों में से एक है। राज्यों में कारोबारी एक ही पोर्टल से अलग अलग विभागों से जरूरी मंजूरियां ले सकते हैं। MSME के विकास के लिए राज्य में अलग मंत्रालय भी है। MSME क्षेत्र देश की GDP में करीब 31% का योगदान देता है और कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कोयम्बटूर में विनिर्माण, कपड़ा और इंजीनियरिंग से जुड़े 80,000 से अधिक पंजीकृत MSME है। कोयम्बटूर के लीड बैंक के जिला प्रबंधक कार्तिकेन ने आकाशवाणी को बताया कि मुद्रा योजना शुरू होने के बाद जिले के उद्यमियों ने कारोबार और उत्पादन बढ़ाने में काफी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना की 4 श्रेणियों में मिलने वाले ऋण से उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने और वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है। तमिलनाडु में कुल 7,59,847 सूक्ष्म, 1,01,861 लघु और 2,818 मध्यम उद्योग पंजीकृत हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
6: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा, इसलिए

0: इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
2: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का दोपहर में बालारामपुरम में श्री उथराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। एक रिपोर्ट।
1: भारत का पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की, रोजगार और लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देश की GDP में पर्यटन का 5% से अधिक योगदान है। साल 2025 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 428 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ 50 लाख से अधिक हो गई है। भारत ने डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई वीजा और इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। भारत ने 2014 में ई वीजा की शुरुआत की थी, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान हो गया है। इस समय 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पिछले 24 घंटों में उधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे अधिक वर्षा हुई। लगातार बारिश के बीच प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी भी हुई है। इस बीच मौसम की चेतावनी को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र सतर्क है और संवेदनशील क्षेत्रों, नदी नालों तथा जल भराव वाले इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार वर्षा से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है।
3: गुरुवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती और इटावा समेत राज्य के कई हिस्सों में जारी है। 63 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जगह जगह जलभराव हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में सामान्य से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट आई है और फसलों, विशेष तौर पर गन्ना, धान और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उड़ीसा के कई हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी धन्यवाद जागृति। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला भी खेली जाएगी। और जागृति, अगर बात करें जापान में जारी एशियाई खेलों में, तो भारतीय पुरुष और महिला तीरंदाजी टीमों ने इस प्रतियोगिता में अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों की तिकड़ी साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशल दलाल ने भूटान को करीबी अंतर से हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिलाओं की टीम चिकिता तनिपार्थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रतिका प्रदीप ने कजाकिस्तान को हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह पक्की की। महिलाओं के शॉर्ट बोर्ड स्पर्धा में भी शुगर शांति गायन और कमाली प्रकाश दोनों तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदकों सहित कुल 30 पदक जीते हैं।
0: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा

हेलो मुंबई, 8:40 हो चुके हैं और आज संडे का दिन भाई साहब, बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा होगा ना। वाला आपको बताना चाहूंगा कि इस बार तकरीबन 36,000 मूर्तियों का विसर्जन हुआ है गणपति बप्पा मोरिया। अगले बरस तू जल्दी आ जा, करते करते खूब ढोल ताशों के साथ है भाई साहब, सड़कें पूरी गुलाबी रंग से रंग दी हैं, लेकिन अब सड़कें थोड़ी सी सूनी हो गई हैं। जहां निकलो ऐसा लग रहा है मुंबई ही है क्या है? बिस्तर भी लंबे पड़े हुए हैं क्योंकि नाच नाच के पैरों में दर्द हो गया है। और अब तुम कह रहे मम्मी थोड़ी ना क्रोसिन की दवाई खिला दो, एक काम करो दूध में हल्दी पिला दो, थोड़ा सा कोई पैर दबा दे तो मजा आ जाए। संडे का दिन तो भाई साहब अब ऐसे लेट ही गुजरने वाला है। लेकिन आपको बताऊंगा कि अगर आप बैंक के कर्मचारी हैं या फिर आप आज बैंक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं संडे के दिन, तो आप भी सोचोगे क्या सवाल है और क्या सोच है। संडे के दिन तो बैंक बंद होते हैं ना, है ना। लेकिन बताना चाहूंगा कि एक अजीबोगरीब फरमान के चलते जितने भी आज सरकारी बैंक हैं और ग्रामीण बैंक हैं वो खुले हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे बात चल रही है कि शायद हड़ताल हो सकती है, तो शायद उसके मद्देनजर ये बात अब है कि संडे के दिन यानी कि आज के दिन 27 सितंबर को आप बैंक में जा सकते हैं अगर आप ग्रामीण बैंक या सरकारी बैंक से कोई भी लेन देन करना चाहते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो बैंक कर्मचारी उनका हाल कुछ ऐसा ही है जैसे स्कूल के अंदर वो बच्चे होते हैं ना, संडे को एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुला लिया जाता है और कहते हैं अरे यार मुंह फुलाए फूफा जी। फिलहाल बहुत ही बेहतरीन ट्रैक आने वाला है बेनी दयाल की आवाज में, पॉकेट में रॉकेट है, बने रहिए मेरे साथ। 9:30 बजे तक ये कारवां कंटिन्यू चलता रहेगा हेलो मुंबई का, जिसके अंदर आप बैक टू बैक सुनने वाले एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। 1858

बावड़ी हो गई तो भाई बात यो है, ज्यादा बावड़ी मत हो तू, जरा थम जा। आज के टाइम में बिग बॉस में इस तरह का जो है दिखाया जा रहा है। करिका मान और गुल्लू जो नाम के कैरेक्टर हैं, हरियाणवी कैरेक्टर बढ़िया तरीके से प्ले कर रहे हैं, शायद हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। और इस तरह की भाषा जब सुनने को मिलती है जो अपने प्रांत से थोड़ी सी अलग हो तो बड़ी अच्छी लगती है। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है जो आप आम बोलचाल की भाषा से हटकर कुछ भी शब्द सुनते हो, चाहे वो किसी भी भाषा के हों, दिल को अच्छा लगता है और लगता है कि कुछ नया सुना है। जैसे आप बात करें यंग डीएसए की भी, तो जिस तरह का उनका एक अंदाज है, जिस तरह से वो बताते हैं कि यरवाड़ा से जो है वो हैं, और जिस तरह का वो अंदाज है, आए मैं बोलता ना ब्रो, तू काहे को नहीं मानती मेरी बात, नहीं करना तो ये वो, यू नो, आपको थोड़ा कैची लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। वेल, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो और भी कई सारे ऐसे जो हैं कैरेक्टर्स हैं, मैं बात करूं उसके अंदर लव की, जो बात जिस तरह से पंजाबी अंदाज में करती हैं, और मैं कि क्या, ओ इसको क्या है, यू नो, तो अपना जो है एक टच है बात करने का, लोगों ने कहीं ना कहीं शहनाज गिल से भी कंपेयर करते हैं। वेल, बिग बॉस जो है इस बार अच्छी सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन फिलहाल वक्त आ चला है अगले गाने का, जो बहुत ही अच्छे नंबर बटोर चुका है अपने जमाने में। वेल, ये जमाना कोई बहुत पुराना नहीं था, ये था वो फिल्म जिसका नाम था मिशन कश्मीर, और शंकर महादेवन की आवाज में ये गाना जब बजा था तो बाय गॉड कश्मीर की याद आ गई थी।

0: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
2: 1858 साली राणीनं भारताचा राज्यकारभार आपल्या हातात घेतला। त्याची स्मृती म्हणून वस्तू संग्रहालयाचं नाव व्हिक्टोरिया म्युझियम असं ठेवण्यात आलं, तर बागेला व्हिक्टोरिया गार्डन्स हे नाव देण्यात आलं।
3: या सैन्याच्या निवासासाठी जुन्या सैनिकी छावण्यात थाटलेला म्युझियमचा संसार 24 तासांच्या आत गुंडाळून ती जागा सैन्याच्या ताब्यात देण्याचा हुकूम सुटला। तिथल्या वस्तू टाउन हॉल मध्ये हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला।
2: इमारतीचे आराखडे अंतिम टप्प्यात असतानाच संग्रहालय आणि बागेचे मुख्य आरेखनकार विलियम ट्रेसी यांचं निधन झालं। त्यांचा अकाली मृत्यू संग्रहालय समितीसाठी धक्कादायक होता, पण दुःख करत बसायला वेळ नव्हता।
4: श्रोतेहो, भाऊदाजी लाड वस्तू संग्रहालयाची गोष्ट अवश्य ऐका, नंदिता पाटकर आणि मंदार परांजपे यांच्याकडून। लेखक आहेत नितीन साळुंखे। ही गोष्ट आपण ऐकू शकाल 22 ते 29 सप्टेंबर दरम्यान रोज सकाळी 8:15 FM रेनबोवर आणि सकाळी 9 अस्मिता वाहिनीवर आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍप वर दोन्ही वेळेला। जरूर ऐका अज्ञात मुंबई हा कार्यक्रम दररोज।
5: वेलकम बैक दोस्तों, 9:18 हो चुके हैं और वक्त ये कह रहा है कि आपको अगली खबरें बता दी जाए। वेल तो गरबा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, यूं कहूं या होने वाली हैं। नवरात्रि आने वाली है और मुंबई के कुछ इलाकों में भाई साहब अभी से गरबा को लेकर एक बातचीत कही जा रही है। कहा जा रहा है कुछ

आयोजकों ने कहा है कि एंट्री के लिए अब आधार कार्ड लाना होगा। अब लोग इस बात से थोड़े से परेशान है कि भाई साहब पैसे तो जुगाड़ कर लेते हैं हम पास के लिए, हैं पास के लिए पैसे तो जुगाड़ लेंगे, पर आधार कार्ड पर जो अपनी पासपोर्ट साइज वाली डरावनी फोटो दिखाकर गरबा पंडाल के सिक्योरिटी गार्ड को कैसे मनाएंगे? अरे भाई साहब मेरी फोटो है, अरे मैं ही हूँ भाई साहब, है ना, क्योंकि सेल्फी वाली पिक्चर में और आधार कार्ड की पिक्चर में तो जमीन और आसमान का अंतर होता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल

0: और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: 1858 साली राणीनं भारताचा राज्यकारभार आपल्या हातात घेतला। त्याची स्मृती म्हणून वस्तू संग्रहालयाचं नाव व्हिक्टोरिया म्युझियम असं ठेवण्यात आलं, तर बागेला व्हिक्टोरिया गार्डन्स हे नाव देण्यात आलं।
2: या सैन्याच्या निवासासाठी जुन्या सैनिकी छावण्यात थाटलेला म्युझियमचा संसार 24 तासांच्या आत गुंडाळून ती जागा सैन्याच्या ताब्यात देण्याचा हुकूम सुटला। तिथल्या वस्तू टाउन हॉल मध्ये हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला।
1: इमारतीचे आराखडे अंतिम टप्प्यात असतानाच संग्रहालय आणि बागेचे मुख्य आरेखनकार विलियम ट्रेसी यांचं निधन झालं। त्यांचा अकाली मृत्यू संग्रहालय समितीसाठी धक्कादायक होता, पण दुःख करत बसायला वेळ नव्हता।
3: श्रोतेहो, भाऊदाजी लाड वस्तू संग्रहालयाची गोष्ट अवश्य ऐका, नंदिता पाटकर आणि मंदार परांजपे यांच्याकडून। लेखक आहेत नितीन साळुंखे। ही गोष्ट आपण ऐकू शकाल 22 ते 29 सप्टेंबर दरम्यान रोज सकाळी 8:15 FM रेनबोवर आणि सकाळी 9 अस्मिता वाहिनीवर आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर दोन्ही वेळेला। जरूर ऐका अज्ञात मुंबई हा कार्यक्रम दररोज।
4: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि MS सुब्बुलक्ष्मी का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 16 सितंबर। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से निखिल उइके और रामनगर बैतूल से गगन कुमार। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
5: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
6: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
5: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
6: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
5: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

इतिहास के सबसे उजले प्रसंग प्रतिरोध की आग से लिखे गए हैं, जहां किसी हृदय से उपजे साहस ने सदियों से बंद दरवाजों की सांकलें खोल दी। बात 19वीं सदी के भारत की है, जहां स्त्री के लिए समाज ने उम्र से पहले रिश्ते तय कर दिए थे, सपनों से पहले सीमाएं खींच दी थीं और उसकी आवाज जैसे हाशिए पर रख दी गई थी। ऐसे दुरूह समय में एक स्त्री आगे बढ़ी और पूरे साहस के साथ अपने हिस्से का आसमान मांगा। उनका नाम था डॉक्टर रुखमाबाई राउत। उन्होंने रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताओं, औपनिवेशिक न्याय व्यवस्था और महिलाओं के लिए संकीर्ण विचारधारा को एक साथ चुनौती दी। वो भारत की प्रैक्टिस करने वाली शुरुआती महिला डॉक्टरों में से एक थीं तथा दूरदर्शी नारीवादी चिंतक थीं। यही कारण है कि उनके संघर्ष ने 19वीं सदी के अंत तक आते आते पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। रुखमाबाई का जन्म 22 नवंबर सन 1864 को बॉम्बे के एक सुतार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जनार्दन पांडुरंग था तथा उनकी माताजी का नाम जयंती बाई था। जब रुखमाबाई मात्र 2.5 साल की थीं, तभी उनके पिता का असमय निधन हो गया। लेकिन उनकी माताजी ने उस दौर की सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ते हुए सन 1870 में डॉक्टर सखाराम अर्जुन से पुनर्विवाह किया। डॉक्टर सखाराम अर्जुन बॉम्बे के जाने माने वनस्पति शास्त्री, प्रसिद्ध चिकित्सक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वो प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे तथा महिला शिक्षा और उनकी स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे। ऐसे प्रगतिशील पारिवारिक वातावरण में रुखमाबाई की परवरिश हुई, जिसका बहुत गहरा प्रभाव

उन पर पड़ा। वो नई और क्रांतिकारी सोच के साथ बड़ी होने लगीं। घर पर ही उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की गई। मराठी और अंग्रेजी भाषा में वो पारंगत हुईं। इसके साथ ही उन्हें गणित तथा अन्य बुनियादी विषयों का ज्ञान भी दिया गया। उनके घर पर नियमित रूप से विद्वानों, कानूनविदों और समाज सुधारकों का आना जाना बना रहता था, जिसके कारण उनके भीतर बहुत कम उम्र में ही तर्कसंगत सोच और स्वतंत्र चेतना का विकास हुआ।

जब रुखमाबाई मात्र 11 वर्ष की थीं, तभी उनका विवाह 19 वर्षीय दादाजी भीकाजी से कर दिया गया और तय हुआ कि उनके पति रुखमाबाई के घर पर ही रहकर अपनी शिक्षा पूरी करेंगे ताकि वो आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन उनके पति गलत संगत में पड़ गए तथा अकर्मण्य जीवन बिताने लगे। जब रुखमाबाई वयस्क हुई तो इन्हीं कारणों से उन्होंने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। ऐसे समय में उनके पति दादाजी भीकाजी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तथा रुखमाबाई के खिलाफ दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का मुकदमा दायर किया। ये मुकदमा तत्कालीन न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। न्यायाधीश रॉबर्ट हिलपिन्ही ने 1885 में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए रुखमाबाई के पक्ष में फैसला सुनाया, क्योंकि उनका विवाह अबोध बचपन में उनकी सहमति के बिना हुआ था। इसके बाद फिर अपील हुई और अपीलीय अदालत ने जज पिन्ही के निर्णय को अस्वीकार कर मामला पुनः विचार के लिए भेजा। मुकदमे के पुनर्परीक्षण में सन 1887 में जस्टिस फरान ने उनके पति के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन रुखमाबाई ने पूरे साहस के साथ स्पष्ट किया कि वो पति के साथ रहने की बजाय जेल जाना स्वीकार करेंगी और अंततः सन 1888 में अदालत के बाहर 2000 रुपए के वित्तीय समझौते के बाद उनके पति ने अपना दावा छोड़ा और रुखमाबाई को स्वतंत्र जीवन जीने का मार्ग मिला। इस मुकदमे के दौरान ही सन 1885-86 में रुखमाबाई ने एक प्रमुख समाचार पत्र में अ हिंदू लेडी के छद्म नाम से पत्रों की एक प्रसिद्ध श्रृंखला प्रकाशित की। इन पत्रों ने तत्कालीन भारतीय समाज के बौद्धिक जगत को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि समाज में लड़कियों को केवल 8 या 9 साल की उम्र में विवाह के बंधन में बांध दिया जाता है। उन्हें अपनी इच्छा या शिक्षा को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता नहीं होती। पुरुषों को बहुविवाह की छूट है, जबकि महिलाओं पर कठोर पाबंदियां हैं और विधवा स्त्री अमानवीय यातनाएं भी सहती है। उन्होंने कठोर प्रश्न किए कि ऐसा क्यों है। इस तरह उनके लेखों ने अनेक सुधार अभियानों को मजबूती दी तथा ब्रिटेन के समाचार पत्रों ने भी इन्हें प्राथमिकता से छापा। परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में महिलाओं की दशा पर गंभीर बहस छिड़ गई। इस मुकदमे की गूंज पूरे यूरोप और ब्रिटिश साम्राज्य में सुनाई दे रही थी। इस तरह ब्रिटेन और भारत में अनेक सुधारकों तथा महिला अधिकार समर्थकों ने उनके पक्ष में आवाज उठाई तथा समर्थकों ने उनकी आगे की शिक्षा के लिए धन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1889 में रुखमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड रवाना हुई। रुखमाबाई ने लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर वुमेन में अध्ययन किया तथा रॉयल फ्री हॉस्पिटल में प्रशिक्षण प्राप्त किया। आगे चलकर उन्होंने एडिनबर्ग के स्कॉटिश मेडिकल कॉलेज की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1894 में उनका नाम मेडिकल रजिस्टर में दर्ज हुआ। इसी दौरान सन 1890 में उन्होंने ब्रिटिश पत्रिका न्यू रिव्यू में इंडियन चाइल्ड मैरिज एन अपील टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट शीर्षक से एक शोधपरक लेख लिखा। इसके माध्यम से उन्होंने वैश्विक मंच पर यह सिद्ध किया कि भारत में बाल विवाह कोई धार्मिक अनिवार्यता नहीं है, बल्कि ये एक कुप्रथा है। इस तरह उनकी कलम ने लोगों को झकझोर कर जगाने का काम किया।

अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रुखमाबाई की पहचान केवल एक भारतीय महिला के रूप में नहीं रही, बल्कि वो स्त्री अधिकार और स्वतंत्र निर्णय की आवाज के रूप में पहचानी जाने लगीं। वहां उन्होंने महिला अधिकारों और मताधिकार से जुड़े विभिन्न संगठनों से संवाद किया। विभिन्न आंदोलनों में वो शामिल हुईं। इस तरह उन्होंने अपनी विचारधारा को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। रुखमाबाई के प्रकरण और उनके संघर्ष ने औपनिवेशिक भारत के सामाजिक और विधिक ढांचे में दूरगामी बदलाव की नींव रखी। उनके मुकदमे के कारण बाल विवाह, महिला अधिकार और सहमति की अवधारणा पर देशव्यापी बहस शुरू हुई। रुखमाबाई के मामले ने सुप्रसिद्ध समाज सुधारक बहराम जी मालाबारी के नेतृत्व में चल रहे अभियान को कानूनी और व्यावहारिक आधार प्रदान किया। इस व्यापक जन आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार को सहमति आयु अधिनियम 1891 पारित करना पड़ा, जिसमें लड़कियों की शारीरिक सहमति की आयु को 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया। सन 1894 में रुखमाबाई एक योग्य चिकित्सक के रूप में भारत लौटी। वो कादम्बिनी गांगुली और आनंदीबाई जोशी की तरह भारत में चिकित्सक का सफल पेशेवर जीवन जीने वाली शुरुआती महिला चिकित्सकों में शामिल हुईं। सन 1895 में वो सूरत के

वुमेन्स हॉस्पिटल की चीफ मेडिकल ऑफिसर बनी और दो दशक से अधिक समय तक वहां चिकित्सा सेवा दी। सन 1918 के आसपास उन्होंने राजकोट के जनाना हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी। महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये उनका महत्वपूर्ण योगदान था। एक निष्ठावान डॉक्टर के रूप में कार्य करते हुए भी रुखमाबाई ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अपनी लड़ाई हमेशा जारी रखी। अस्पताल संचालन के दौरान उन्होंने देखा कि पर्दा प्रथा के कारण महिलाएं गंभीर बीमारियों की शिकार हो रही हैं। उन्होंने अस्पताल के भीतर पर्दा प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और महिलाओं को खुले वातावरण में सांस लेने के लिए प्रेरित किया। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने पर्दा द नीड फॉर इट्स एवोल्यूशन नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की। इसमें उन्होंने पर्दे के कारण महिलाओं की सामाजिक भागीदारी और उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार किया। उन्होंने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ी। डॉक्टर रुखमाबाई राउत का मानना था कि मरीज केवल मरीज होता है, उसे जात या वर्ग की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने हमेशा सुनिश्चित किया कि सभी मरीजों को एक समान भोजन, दवा और सम्मान मिले। सेवानिवृत्ति के बाद वो बॉम्बे में ही बस गईं तथा अनाथालयों और महिला आश्रम से जुड़कर काम करने लगीं। उन्होंने अनाथ बच्चों की शिक्षा, विधवाओं के पुनर्विवाह और लड़कियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अपना शेष जीवन और निजी संसाधन समर्पित कर दिए। उनका मानना था कि किसी भी देश की वास्तविक शक्ति उसकी महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और प्राप्त अधिकारों पर निर्भर करती है। जीवन के अंतिम दिनों तक वो इसी संकल्प के साथ पढ़ने, लिखने और सामाजिक कार्यों में संलग्न रहीं और 25 सितंबर सन 1955 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर इस वक्त के मुख्य समाचार के थांडा के साथ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के केरल दौरे पर रहेंगे। वो दोपहर में बालारामपुरम जाएंगे, जहां वो उथराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 में से 265 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया है। प्रभावित इलाकों के लिए फसल ऋण के पुनर्गठन, भू राजस्व में छूट, कृषि पंपों के बिजली बिल में रियायत, पानी के टैंकरों की व्यवस्था और विद्यार्थियों की परीक्षा फीस माफ करने सहित कई राहत उपायों की घोषणा की गई है। ग्राहकों की सुविधा के लिए आज रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से 3 मैचों में वनडे सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का पहला वनडे मैच आज दोपहर 2 बजे तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। और इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार। आकाशवाणी एफएम रेनबो। वेलकम बैक दोस्तों। 10:01 हो चुके हैं और कार्यक्रम टिक टिक करती हुई घड़ी के साथ ये कह रहा है कि नमस्ते भारत नाम का एक खूबसूरत सा कार्यक्रम शुरू किया जाए। और इसकी शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प गाने के साथ शुरू हो रही है, जो स्वदेश से जुड़ा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है ये। और ये फिल्म है एक ऐसे इंसान की जो पढ़ लिख कर विदेश चला जाता है और वो फिर जब किसी कारणवश भारत आता है तो भारत में एक गांव की परिस्थिति देखकर उसका दिल झंझोर जाता है और फिर वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई को वापस अपने देश को उस जगह पर ले जाने की कोशिश करता है जहां वो विदेश में जाने के सपने देख रहा था। वो अब स्वदेशी हो जाता है।

वेलकम बैक दोस्तों, उदित नारायण साहब की आवाज़ में आपने सुना है बेहतरीन सा गीत, साथ में थे मास्टर विघ्नेश और बेबी पूजन किड्स। 10:16 हो चुके हैं। एक बड़ा ही खूबसूरत सा किस्सा आपके साथ में शेयर करता हूं, जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे पूर्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्हीं से जुड़ा हुआ है। हुआ यूं कि जब वो अपने राष्ट्रपति के पद से रिटायर हुए तो वो राष्ट्रपति भवन छोड़कर जा रहे थे। उनके पास सामान के नाम पर केवल कुछ किताबें, उनके कपड़े और एक वीणा और कुछ लिखने का सामान था। जब उनके जाने का समय आया तो एक अधिकारी ने उनके एक छोटे से सूटकेस को देखा और पूछा कि क्या उनके पास कोई और सामान नहीं है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने मुस्कुराकर कहा कि मेरे पास यही मेरी असली कमाई है। और यही प्रसंग हमें सिखाता है कि असली महानता महंगे सामान में नहीं है, बल्कि सादगी और ज्ञान में होती है।

0: for the Asian Games 2026 update.
1: This IT Nagoya.
2: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं विदुषी वत्स। तो चलिए इस घंटे के अपडेट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग से भारत के लिए बेहद अच्छी खबर आई है। एशियाई खेलों में कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज करते हुए भारत का पहला बॉक्सिंग पदक पक्का कर लिया है। अंकुश ने ताजिकिस्तान के नेजरुख सलीमो को 5-0 के सर्वसम्मत निर्णय से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अंकुश ने मुकाबले के दौरान शुरू से ही आक्रामक और नियंत्रित बॉक्सिंग का प्रदर्शन किया और 5 जजों ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इस जीत के साथ ही अंकुश ने एशियाई खेलों में भारत के लिए बॉक्सिंग का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। अब सेमीफाइनल में अंकुश पंघाल के सामने बेहद कड़ी चुनौती होने वाली है। उनका मुकाबला उज़्बेकिस्तान के मौजूदा विश्व चैंपियन फजलुद्दीन एर्केबेनोवस से खेला जाएगा।
3: And there is encouraging news coming in from the athletics track with Santosh Kumar first booking his place in the men's 400 meters hurdles final, finishing second in his heat in 49.61 seconds. And now India has added two more finalists in the women's 400 meters hurdles with Vithya Ramraj and Anu Raghavan both making it through. Vithya produced a strong run clocking 55.73 seconds to finish third overall, while Anu Raghavan was right behind her, recording 55.84 seconds and taking fourth place overall. So three Indian athletes across the men's and women's 400 meter hurdles have now made it through to their respective finals.
2: डेकाथलॉन की बात करते हैं, जहां पर डिस्कस थ्रो के बाद तेजस्वी शंकर तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। डिस्कस थ्रो में मुश्किल प्रदर्शन करते हुए तेजस्वी शंकर ने 36.77 मीटर की दूरी तय की और 599 अंक अर्जित किए। अब उनके कुल 5,869 अंक हो गए हैं और वो तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। चीन के चेन शिंगुआ 5,919 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि जापान के युमा मारियामा 5,914 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। तेजस्विन अब पोल वॉल्ट और भाला फेंक स्पर्धाओं में भाग लेंगे।
3: And now some results coming in from Kurash. It has been a difficult outing for India today, with all four athletes who competed seeing their Asian Games campaigns come to an end. In the men's plus 90 kilogram category, Yash Kumar Trohan lost his round of 16 bout 0-10 to Tajikistan's Mirmamadov. Vishal did make it through to the quarterfinals in the same category, but his campaign ended there after a 0-5 loss to Thailand's Yeon. In the women's 57 kilogram category, Sangeeta was beaten 0-10 by Philippines Quilino in the round of 32. Bharati also went out in the round of 16, losing 0-3 to Iran's Azar Vened. So four Indian Kurash athletes in action today and all four have been eliminated. There are still two more Indians to watch in Kurash on September 28 and September 29.
2: Vidushi, ab lambi kood ki baat kar lete hain. Udhar Mulli Shishankar ne 7.84 meter ki chhalang lagakar lambi kood के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हांगजो में हुए पिछले संस्करण में रजत पदक विजेता रहे शिशंकर ने शीर्ष 12 में जगह बनाने के लिए दूसरे स्थान पर रहकर फाइनल में जगह बनाई है। प्रतियोगिता में भाग ले रहे अन्य भारतीय खिलाड़ियों में डेविड सोलेमन ने 7.62 मीटर की छलांग लगाकर सातवें स्थान पर रहकर पदक के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल कल यानी सोमवार को खेला जाएगा। यहीं पर एक और खबर देते हैं, बैडमिंटन की महिला युगल मिश्रित युगल के बाद महिला एकल में भी आज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अपने अपने मैच हार कर बाहर हो गए। अभी कुछ देर पहले समाप्त हुए महिला एकल में 19 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने एशियाई खेलों में अपने पदार्पण में मुकाबले में हार गई। हालांकि उन्होंने 3 बार की विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची को कड़ी चुनौती दी, लेकिन 16-21, 21-14

0: 21 से हार गई हैं। वहीं पर बात करें पीवी सिंधु की, तो पीवी सिंधु अपना मुकाबला महिला एकल का खेल रही चेन यू फेई के खिलाफ और पहला गेम वो जीत चुकी हैं। यहाँ एक उम्मीद बची हुई है, क्या यहाँ पर पीवी सिंधु जीतकर भारत को खुशखबरी देती हैं।
1: Moving across to fencing, India's women's sabre team also saw their campaign come to an end in the quarter-final. The Indian team featuring Bhavani Devi, Shreya Gupta, Jafarlin Jais and Shruti Joshi went down 35-45 to Uzbekistan. So after reaching the quarter-final stage, the Indian women's sabre team could not make it through to the semi-finals. And now let's turn to shooting, where the trap competition continues. In the women's trap event, Neeru Dhanda is currently leading the individual standings at number one. After 2 days of competition, she added 48 out of 50 targets on day one. India's women trap team has also finished day two in second position in the team standings, with Ashima Alawat currently at 16th position individually. In the men's trap event, Kenan Chennai had a perfect start, hitting all 25 targets in his opening round. He then managed 22 in the next round and is currently at 11th individually. Shapat Bhardwaj at 22, with Indian men's team finishing day one in 7th position in the team standings. And a live update coming from the precision round, Indian women's team is 3rd and 25-meter pistol and the rapid round to follow.
0: जी चलते चलते आपको ये भी बता दें, महिलाओं की मैराथन रेस वॉक में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। प्रियंका गोस्वामी करीब 9 मीटर के बाद डिस्क्वालीफाई कर दी गई। वहीं मंजू रानी 3 घंटे 40 मिनट 17 सेकंड के समय के साथ छठे स्थान पर ही। दोस्तों अब अगली अपडेट में आपसे मुलाकात होगी 12:30 पर। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथी विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे थे अभी 20th एडिशन एशियन गेम्स 2026 के अपडेट्स। और अब कार्यक्रम कंटिन्यू कर रहे हैं हम, जिसमें आप सुन रहे हैं भारत के वो छोटे छोटे से किस्से, जिन किस्सों ने इंसान में कहीं ना कहीं अभी भी इंसानियत बरकरार रखी हुई है। एक छोटा सा किस्सा आपके समक्ष हाजिर करता हूं, भारत के एक छोटे से रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले एक गरीब वृद्ध व्यक्ति का, जो रोज सुबह लोगों को चाय बेचता था। वो व्यक्ति हर दिन अपनी कमाई का एक हिस्सा एक स्थानीय स्कूल के गरीब बच्चों की किताबें खरीदने के लिए अलग रख देता था। एक ग्राहक ने उससे पूछा कि वो खुद इतनी कठिन जिंदगी जी रहा है, फिर भी पैसे क्यों दान करता है। वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने अंधेरा देखा है, मैं चाहता हूं कि इन बच्चों के रास्ते में दिया जलता रहे। उसकी इस छोटी सी मदद ने आगे चलकर कई बच्चों को पढ़ने और आगे बढ़ने की ताकत दी। सीख तो इससे बस यही मिलती है कि मदद करने के लिए बड़े बैंक बैलेंस की नहीं, बल्कि बड़े और साफ दिल की जरूरत है।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे थे कावा कावा। और एक कावा कावा जो है बड़ा ही पॉपुलर गाना है लखनऊ सेंट्रल का, और लखनऊ की हस्ती मेरे साथ में बैठी हुई है इस वक्त में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और मेरे साथ में जो बैठे हैं उनका नाम है आदित्य। उनकी जो अल्फाज है वो मियाँ, और इस तरह के वो तलफ़ और इस तरह के वो हलक से बात करते हैं कि भाई साहब, मैं उनको सुनने के बाद में ऐसा लगता मुझे मैं शायद किसी एक ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा गहरा है। और क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान की ज़ुबान बताती है कि वो किस तरह से पला बड़ा है या उसने किस तरह से अपनी तैयारी की है। तो मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं

0: इस तरह से मतलब बातचीत कर पाता हूँ, और मुझे लगता है कि वो लोग थोड़े से मेरे आम जो आसपास के लोग हैं उनसे थोड़े से हटकर हैं। आप जब उनकी आवाज़ सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा, और आपने अगर उनके पहले के शो सुने होंगे तो ये अंदाज़ा आपको अमूमन हो चुका होगा। फिलहाल थोड़ी देर में आप सुनेंगे मन की बात, मैं आपसे लेता हूँ विदा। मेरे मन की बात मैंने आपसे सारी कर ली और आपके मन की सारी बात मैंने सुन भी ली है, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी हम एक बार फिर से आपस में एक दूसरे के मन की बात को सुनेंगे और करेंगे अगले शो में। लेकिन फिलहाल वक्त है अब आपसे विदा लेने का। रखिए अपना ख्याल, संडे का दिन है, बैंक वाली बात जो मैंने आपसे बोली थी याद रखिएगा, आज खुले हुए हैं और ये अमूमन होता नहीं है, हड़तालें होने वाली हैं। जो भी बैंक का काम वाम है वो आज निपटा लो, क्योंकि 3 दिन की हड़ताल तो पता ही है ना, 28, 29, 30 की। तो बस सरकारी और ग्रामीण बैंक जो है वो खुले हुए हैं, वहाँ पर जाके अपने काम निपटा लो, चाहे सरकारी फूफा मुँह फुलाकर बैठे हों। क्योंकि आज के दिन में मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आप कभी भी संडे,
1: कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक कितना ब्लॉक करूं यार
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता हर बार नया नंबर आ जाता है
4: तो क्या करूं
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट बस कुछ सेकंड्स का काम
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा
5: हाँ रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग
6: जी कॉलेज का टाइम याद है
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए कितनी बातें भूल गया हूँ तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है
7: कहाँ से पता चलेगा
6: उद्गम से
8: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च

0: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी, वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था, उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में PM बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था। और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की।

साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की ये तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं। मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है।
1000

26 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण

पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवरता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना, उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम, सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत की इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों, उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है। कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई

वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहां फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था, तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही है। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है। एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है।
वहीं कई ऐसे लोग भी

जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने आचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पोषण

स्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए, वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहाँ भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिका नेत के रूप में की जाती है और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहाँ आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहाँ हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: की बात। आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

11:38 का वक्त और मन की बात के बाद आप एक बार लुत्फंदोज होना शुरू हो चुके हैं ब्रेक फ्री में अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ। आपने ट्यून किया 107.1 एफएम रेनबो मुंबई। तो ब्रेक फ्री में आज बात उन किताबों की और उन किताबों के उस सार की जो आपकी जिंदगी को थोड़ा सा ब्रेक फ्री करता है और आपकी सोच को ब्रेक फ्री करता है, आपको एक नए आसमान में उड़ने की जगह देता है। तो जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू और इसे लिखा है डेविड जे श्वार्ट्ज़ ने और फरमाते हैं कि हम अपनी कामयाबी का दायरा अपने दिमाग में बना लेते हैं और कभी उसको बड़ा नहीं होने देते। श्वार्ट्ज़ फरमाते हैं कि एक बड़े पते की बात है कि इंसान अपनी काबिलियत की कमी से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच की वजह से मात खाता है। लोग बहाने की बीमारी या एक्सक्यूजाइटिस के शिकार होते हैं, उम्र कम है, पता नहीं, पैसा नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। किताब कहती है कि डर का सिर्फ एक ही इलाज है, एक्शन। बड़ा सोचिए, खुद को कभी कमतर मत आंकिए और अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ पूरे दिल से अंजाम दीजिए। जब आप खुद की कद्र करेंगे तभी दुनिया आपके सामने सर झुकाएगी। और इस बात को बेहतर समझना है तो आप इस किताब का भी रुख कर सकते हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू। और फिलहाल तो हम एक बड़े से खूबसूरत से गाने से आपको लुत्फंदोज कराते हैं और थोड़ा सा आपके दिलो जिगर को नाचने पर मजबूर करते हैं। सुंदर 107.1 FM रेनबो मुंबई।

11:44 का वक्त और आप लतवंदोज हो रहे हैं अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ 107.1 एफएम रेनबो मुंबई पर। और ब्रेक फ्री का वक्त, ब्रेक फ्री में ऐसी किताबों का जिक्र जो आपकी सोच को ब्रेक फ्री होकर एक खुले आसमान में उड़ने की इजाजत देती है, नई सोच को पनपने का मौका देती है। तो अगली जो किताब है वो है वर्तमान की शक्ति, जिसे लिखा है, इसका हिंदी अनुवाद है एकहार्ट टोले ने। और हमारा दिमाग, फरमाते हैं कि वो हमारा दिमाग जो है या तो गुजरे हुए कल के पछतावे में उलझा रहता है या फिर आने वाले कल के खौफ से डरा रहता है। इसी चक्कर में हम आज जो है ना उसको नहीं जी पाते और वो हमारे हाथ से फिसलता चला जाता है। एकहार्ट टोले कहते हैं कि दुख और तनाव सिर्फ दिमाग का बना हुआ जाल है। जिंदगी सिर्फ इस एक पल में है जिसे आप जी रहे हैं, जैसे आप अभी हमारे साथ। जब आप अपने ही ख्यालों को किसी तीसरे इंसान की तरह देखना शुरू कर देते हैं तो सारे डर काफूर हो जाते हैं। ये किताब दिमाग में फिजूल की बकवास को शांत करके रूह को सुकून देने का रास्ता दिखाती है और इस एक लम्हे में ठहर जाने को कहती है, उस सुकून को बाहों में समेट लेने को कहती है। फिलहाल एक खूबसूरत सा गाना और आपसे ये दरख्वास्त है कि आप हमारे साथ ये मोहब्बत और हमारा साथ यूं ही बना रखें। शुक्रिया।

जी, ब्रेक फ्री के सिलसिले में अगली किताब है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, दृष्टिकोण ही सब कुछ है, जेफ केलर की किताब है। और फरमाते हैं कि जिंदगी में मुश्किलें किसके पास नहीं आती, फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप उन पर रिएक्ट कैसे करते हैं। जेफ केलर फरमाते हैं कि एक खिड़की की मिसाल से उसे समझाने की कोशिश करते हैं, और अगर आपका नजरिया गंदा है तो पूरी दुनिया आपको मायूस और बेरंग दिखेगी। अपनी सोच की खिड़की को साफ कीजिए, जैसे आप सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं, और जैसा बोलते हैं वैसे ही आप काम करते हैं। अगर जुबान से हमेशा नाकामी और शिकायतें निकलेंगी तो नतीजा भी शायद वही होगा। अपने अल्फाज बदलिए, सोच को पॉजिटिव कीजिए, फिर देखिए जिंदगी का पूरा मंजर कैसे बदल जाता है। जैसे आप हमारे साथ जिंदगी के कुछ खूबसूरत पल अपने बदल रहे हैं। फिलहाल के लिए ब्रेक फ्री का सिलसिला यहीं तक, हम आपसे बहुत जल्द ही फिर से मुलाकात करेंगे एक बेहद खास प्रोग्राम म्यूजिक कैफे में। और उसके पहले समाचार का एक अंतराल होगा जो आप हमारे द्वारा ही सुनेंगे। फिलहाल एक बेहद खूबसूरत से गाने से आपको जोड़ते हैं, और आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि आप एफएम रेनबो के साथ यह मोहब्बतों का साथ यूं ही बनाए रखिए, सुनते रहिए। और एक खास बात और, 1 से 2 के दरमियान आप अपनी पसंदीदा गानों की फहरिस्त भी हमें भेज सकते हैं। वो कुछ खूबसूरत गाने जो आपकी पसंद के होंगे उन्हें हम आप तक वापस पहुंचाएंगे, और आपकी खूबसूरत बातें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो इसका है हमें बेसब्री से इंतजार, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, अपराह्न के 12 बजे हैं और आप सुनिए हिंदी मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का नया उदाहरण पेश किया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश इस स्ट्राइक की कल 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। महाराष्ट्र के पालघर जिले में कल रात 3.6 तीव्रता का भूकंप आया, अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार भूकंप का केंद्र तलासरी क्षेत्र में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई पर था। किसी के घायल होने या मकानों को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। भारत के अंकुश पंघाल ने एशियाई खेलों में मुक्काबाजी में भारत का पहला पदक पक्का करते हुए पुरुषों के 80 किलो क्वार्टर फाइनल में रविवार को तजाकिस्तान के नेकरूज सालिमोव को 5-0 से हराया। अंकुश ने सालिमोव को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसी के साथ ये मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। आप सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई।

सफर, जर्नी, पर्यटन, टूरिज्म, यात्रा और मुसाफिर, इन सारे लफ्ज के मानी एक से हैं। पर क्या कभी आपने इन अल्फाज पर उतना गौर किया जितनी अहमियत इनकी हमारी जिंदगी में है? नमस्कार, आदाब, वेलकम म्यूजिक कैफे को और ज्यादा म्यूजिकल बनाने। हम आ चुके हैं आपके साथ आदित्य, और आप सुनना शुरू कर चुके हैं 107.1 FM रेनबो मुंबई। तो बात शुरू करते हैं आज के रोज से। आज ही के दिन हम दुनिया भर में मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। पर्यटन कई सारे शहरों और राज्यों की जीडीपी का एक अहम हिस्सा है। खैर, इसकी हमारी जिंदगी में बस उतनी भर अहमियत नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। जब हम सफर करते हैं तो हमारे जहन की

सीमित सोच की दीवारों को गिराते हैं, नए आकाश में उड़ते हैं, नई चीजों को अपनी जिंदगी में जोड़ते हैं, नई सोच को पनपने की जगह देते हैं और अपने से अलग लोगों को समझने की और उनकी जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, जिनका परिवेश अलग है, जिनका रहन सहन अलग है, जिनकी भाषा अलग है, और उनसे कभी कभी मोहब्बत भी करते हैं। वक्त गुजरता है और साल दर साल, महीने ब महीने और दिन पर दिन हम क्या कर रहे होते हैं इन सारे दौर में? दरअसल हम सुबह से शाम तक एक सफर तय कर रहे होते हैं। इस सफर में हमें नसीब होती हैं कुछ खूबसूरत मंजिलें, बस जरूरत होती है एक जिंदा दिल हम सफर की। जैसे इस सफर पर हमारे हम सफर हैं आप, और हम हैं आपके साथ, आपके दिल की आवाज आदित्य आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं एक दिल फरेब सफर, दिल से दिल।

सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी गर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। कुछ तजर्बे, कुछ एक्सपीरियंसेस वक्त रहते कर लिए जाए तो बेहतर रहता है। शायर भी ये कहता है कि उस कैद से बाहर निकलो और सैर करो जो तुमने अपने इर्द गिर्द बना रखी है। कभी काम के चलते, कभी बजट के चलते, उस चीज को नजरअंदाज नहीं करो जो अपने वक्त से बंधी है। तमाम सारे घुमक्कड़ शास्त्र घूमने के इंपॉर्टेंस को भी इसी तरह बताते हैं कि कुछ जगह ऐसी होती हैं।

ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तो हैरान रहेगा। सफर के रिगार्डिंग, सफर के कॉन्टेक्स्ट में, सफर के संदर्भ में ये कितनी खूबसूरत बात है ना कि सफर का मजा भी तभी है जब ज्यादा सामान साथ ना हो। ऐसा ना हो कि आप किसी सफर पर निकलें और जिंदगी के तजुर्बे जोड़ने के लिए वहां पहुंचें तो बस अपना बैगेज ही संभालते फिरें। अब इसी कहानी को जरा गहरे उतर कर समझिए और सोचिए कि बात उस बोझ की है जो आपकी पीठ पर है सामान के रूप में, तभी वो सफर अचानक आपके लिए मुश्किल हो जाता है। पर उस बैगेज का जो उस बैगेज का क्या होगा जो आपके जहन में है, उसे साथ लेकर चल रहे हैं जब पीठ पर रखा हुआ सामान इतना मुश्किल दे रहा है, तो जहन में जो बैगेज लेकर चल रहे हैं, जहन में जो बोझ लेकर चल रहे हैं, उसका क्या होगा। इसलिए सबसे अहम है कि जब आप नई यात्रा की शुरुआत करें तो पहले उस बोझ को हल्का करें जो आपकी पीठ पर नहीं आपके दिल में है, आपके मन में है, आपके जहन में है। फिर देखिए सफर कितना मजा देता है। और देखिए गुलजार साहब भी कुछ खूब फरमाते हैं, जब एक नए सफर पर निकलता है इंसान, चाहे वो जिंदगी का सफर हो, किसी जगह जाने का सफर हो, या फिर क्यों ना किसी मोहब्बत में पड़े आशिक का सफर हो।
1: ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

सफर की बात आती है तो एक सफर वो भी है जो हम रोज तय करते हैं, सुबह घर से दफ्तर की जानिब और शाम को ऑफिस से घर की ओर। पर कितने ही ऐसे सफर होते हैं जो मंजिल के उधेड़बुन में बिना जिए ही बीत जाते हैं। उस सफर का लुत्फ बिना जिए ही गुजर जाता है। मसलन अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो मोबाइल में तकती निगाहों और एयरबड्स से लैस कानों के बीच कुछ नज़ारे ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिन्हें कहीं जाने की जल्दी नहीं है, बल्कि वो इस मौजूदा वक्त में, इस मोमेंट में जी रहे हैं। कभी ये हमें किसी बच्चे की बेपरवाह हंसी में दिखाई देता है, तो कभी वो बुजुर्ग जो शांत बैठकर अपने आप में या अपने आराध्य की भक्ति में लीन है, तो कभी उस प्रेम में पड़े उस प्रेमी जोड़े में जो ये नहीं चाहता कि इस सफर का कभी कोई अंत हो या इस सफर की कभी कोई मंजिल भी आए। वो बस एक दूसरे का हाथ थामे यूं ही मीलों मील चलना चाहता है और ये कहना चाहता है, अगर तुम साथ हो।

सफ़र में कुछ हम सफ़र ऐसे भी मिलते हैं जहां आप समझते हैं कि अगर ये शख्स हमारा हाथ थाम ले और हम इसके साथ मिलो मिल यूं ही चलते रहें तो सफ़र कितना खुशनुमा बना रहेगा। लेकिन वक्त रहते अगर वो हम सफ़र भी ये बात समझ ले और आपका साथ निभाने को आ जाए तो फिर उस सफ़र का मज़ा, उस सफ़र का लुत्फ दोबाला हो जाता है और फिर वो सफ़र खुशनुमा हो जाता है, हसीन हो जाता है, मोहब्बत से लबरेज़ हो जाता है।

विश्व पर्यटन दिवस हम आज मना रहे हैं और हम हैं आपके साथ, आपके दिल की आवाज आदित्य आपके साथ म्यूजिकल से म्यूजिक कैफे में। सफर और यात्राएं, जब इनकी बात निकलती है तो बात होती है कहीं दूर जाने की। यकीनन कुछ सफर ऐसे होते हैं जहां हम अपने घर से, अपने शहर से दूर जरूर जाते हैं, कुछ हसीन फजाओं में, कुछ हसीन वादियों में, पर उनका हम पर असर क्या होता है कभी आपने सोचा है? जब भी हम अपना मोबाइल या अपने मोबाइल को हवाई जहाज मोड पर लगाकर, उसको छुट्टी पर भेजकर, प्रकृति की गोद में सर रखकर, खुद को जरा बाकी दुश्वारियों से दूर रखकर दो पल उसके पास बैठते हैं, तो हम वापस लौटते हैं खुद तक, खुद में, खुद से, जहां पहुंचने के हमारे पास शायद दूसरे बहुत कम जरिए हैं, बहुत कम रास्ते हैं, और इस तरह हम कुछ वक्त दूसरों से दूर होकर खुद के पास होते हैं। तभी तो कहा है ना, ओ सफरनामा, सवालों का सफरनामा, शुरू तुमसे खत्म तुम पे सफरनामा, जिसे ढूंढा जमाने में मुझी में था मेरे सारे जवाबों का सफरनामा।

12:44 का वक्त और आप लुत्फ अंदोज हो रहे हैं अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ म्यूजिकली म्यूजिक कैफे में। देखा जाए तो जिंदगी में हर एक चीज एक सफर है, कहीं से कहीं के पहुंचने का, कहीं से कहीं का रास्ता तय करने का। फिर चाहे वो घर से निकलकर कहीं दूसरी जगह पहुंचना हो या फिर किसी हम सफर को चुनकर जिंदगी का रास्ता खोजना हो, क्योंकि जिंदगी भी एक सफर है। कभी कभी इसमें ये वो अंग्रेजी वाला सफर भी बन सकता है, लेकिन फिर अगर हमें ऐसा हम सफर मिलता है, ऐसा मुसाफिर मिलता है जो हमें इस जिंदगी के सफर की परिभाषा को नए तरीके से समझाता है, एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट ये जो बचा हुआ सफर है ना, ये हमें काटना नहीं जीना है। लम्हा लम्हा उस सफर की रोशनाई से सराबोर हो जाना है, मोहब्बत से उठती उस महक को अपने अंदर जज्ब कर लेना है और उसमें कहीं बहुत गहरे डूब जाना है।

सफर में भी मोहब्बत का एक अहम पड़ाव है, एक अहम मकाम है, जहां पर आकर आशिक अपने माशूक का पूरी तरह से हो जाता है और उसमें जज्ब सारे एहसास उसके अंदर समाने लगते हैं। और फिर जिंदगी के हम सफर में ऐसा लगता है कि ऐसा कोई हम सफर मिला है आपको, जो जहां तक जिंदगी जाती है उसके साथ आप वहां तक चलना चाहते हैं, वहां तक बहना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं। और फिर एक वक्त में वो सामने वाला शख्स आपके अंदर इस कदर जज्ब हो जाता है कि उसके दुख अपने लगने लगते हैं, उसकी खुशी अपनी लगने लगती है। हम उसकी खुशी में, उसके दुख में शरीक होने लगते हैं, उससे जुड़ने लगते हैं और उन सारे एहसास को महसूस करने लगते हैं जो सामने वाला शख्स महसूस कर रहा है। अगर उस पर गम की जरा से भी कोई बादल आते हैं तो हम समझते हैं शायद हम पर कोई ऐसी मुसीबत आन पड़ी है। ये गाना भी ये कहता है।

इस खूबसूरत से जर्नी सॉन्ग के साथ इस जर्नी को फिलहाल समाप्त करते हैं और बहुत जल्दी ही आपसे मिलेंगे आपके अपने प्रोग्राम हम तुम में, और जहां आपकी फरमाइशें होंगी और आपकी बातें होंगी, आपके गाने होंगे. तो बगैर देरी आप अपने गाने अपनी फरमाइशें भेजना शुरू कर दिए. 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो 4515413233 ये दो कॉलिंग नंबर्स हैं. हम बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं. शुक्रिया.

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: जी, 1:05 का वक्त और ये वक्त होता है आपका यानी हिट एंड हॉट का। और हमने माजरत चाहेंगे, उसके पहले हमने बोल दिया था हम तुम का, जो शाम को प्रोग्राम होता है, लिसनर्स चॉइस का प्रोग्राम। खैर, तो हम

हमारे पास बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं और हम आपको सिलसिलेवार ढंग से नाम पढ़ के सुना देते हैं। हमारे पास कैस्ट्रो जॉन साहब का मैसेज आ गया है, अमित भगत साहब का मैसेज आ गया है, यशमीत जी, यशु निरंजन जी, सौम्या जी का मैसेज आ गया है, विजय महोबिया जी का मैसेज आ गया है, अभिजीत जी का मैसेज आ गया है, TDM नाम से हमारे पास कोई एक नंबर सेव है उनका भी मैसेज आ गया, अजय साखरे जी का मैसेज आ गया, राजेंद्र वर्मा जी का मैसेज है, दीपा पालकर जी का मैसेज है, वैदेही जी का मैसेज है, विजेंद्र जी का मैसेज है, प्रणव जी का मैसेज है, श्रद्धा कार्णिक जी का मैसेज है, पंकज मोहत साहब का मैसेज है, फिरोज सिगानपुरिया साहब का मैसेज है, आकांक्षा मनोज सिन्हा जी का मैसेज है, संजय दर्शन जी, हितेंद्र दास जी और नरोज स्वासिया जी और दिग्दर्शन और कविता, राकेश माथुर जी, प्रमोद चंचोलकर जी, यशवंत आडमुड़े साहब, प्रवीण भाटकर साहब और बाबा जी, इन तमाम सारे लोगों का मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं। और अब हम चलते हैं किसी एक फरमाइश की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहली फरमाइश जो आई है प्रमोद जी की आई है और उनका हमारे पास फ़ोन भी आ गया था और उन्होंने इस खास मौके पर एक फरमाइश की है। महेंद्र कपूर जी से जुड़ा हुआ एक खास दिन है, वो कौन सा दिन है आप भी हमें मैसेज करके बता सकते हैं और याद कर सकते हैं आप उन्हें और उनकी इस खूबसूरत सी आवाज़ से लुत्फानंदोज हो चुके हैं हो सकते हैं और लुत्फानंदोज तो आप होना शुरू हो चुके हैं अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ। और फिर से आपको बता दें आप हिट एंड हॉट सुनना शुरू कर चुके हैं। आप भी अपने मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो 8657661071 पर ये मैसेजेस भेज सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। फिर से नंबर सुन लीजिए अगर हमने तेज बोल दिया हो, 8657661071। यहां पर हम करते हैं बेसब्री से इंतज़ार आपका। ओके, तो इस खूबसूरत से गाने के साथ इस प्रोग्राम की इब्तिदा कहते हैं। अगर तुम साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता चलूं।

तो बिना वक्त गवाए एक और खूबसूरत से गाने से जोड़ते हैं, जिसकी फरमाइश हमें भेजी है यशवंत आठमुड़े साहब ने। अगर हम सही तलफ़ के साथ बोल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें माफ़ी दीजिएगा। और यशवंत साहब का ही मैसेज आया है कि महेंद्र कपूर जी का आज ही के दिन निधन हुआ था और आज उनका स्मृति दिन है, तो हम उन्हें सादर नमन करते हुए इस गाने का लुत्फ ले चुके हैं। और अब आपके पसंद का दूसरा गाना सुनवाते हैं, जिसको आवाज़ दी है मुकेश ने, और गाना बहुत खूबसूरत और बहुत सारे ख्यालात की आवाजाही जो दिमाग में तेज़ होती है और फिर शांत भी होती है और फिर तेज़ होती है, उसके बारे में उस कैफियत को, उस हालात को बयां करता हुआ है।

देखिए कितनी खूबसूरत सी बातें लिखकर भेजी हैं और एक तरीके से एक स्क्रिप्टिंग ही कर दी है हमारे लिए। ये काम किया है प्रणव शिंदे साहब ने और फरमाते हैं कि कहते थे कि वो कभी कभी ही ऐसी शख्सियत आती है जो पर्दे पर चाहत की नई चांदनी बिखेर जाती है। वक्त बदलता है, दौर बदलता है, पर उनकी यादों के हसीन लम्हे आज भी आंखों में प्यार का एक मीठा सा डर जगाती है। सिखाया जिन्होंने दुनिया को, दिल तो पागल है, मोहब्बत की राहों में उठता हर कदम।

घायल है सिनेमा की दीवारों पर, वो ऐसा जादू कर गए उनकी यादों का सिलसिला आज भी हर दिल में घर कर गए। यश चोपड़ा साहब को बर्थ एनिवर्सरी के विनम्र श्रद्धांजलि ऐसा लिखकर भेजते हैं हमें प्रणव शिंदे साहब। और ये जो कुछ लफ्ज बीच बीच में आ रहे थे, कभी कभी, डर, चांदनी, लम्हे, दिल तो पागल है, दीवार, सिलसिला, ये सारी फिल्मों के निर्माता रहे, निर्देशक रहे यश चोपड़ा साहब। कितनी खूबसूरती से उनकी फिल्मों को सजाकर अपनी बात को अंजाम दिया है। और उसी के साथ हमारे पास कुछ फरमाइशें भी भेजी हैं, उनमें से एक गाना हमने क्यों कर लिया और वो आप तक पहुंचने के लिए बेताब है। आप सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई।

0: आकाशवाणी मुंबई। तुषार पवार राष्ट्रीय बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। दहशतवादाविरोधात भारताचं धोरण नेहमीच निर्णायक आणि स्पष्ट राहिलं असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं मन की बातमध्ये प्रतिपादन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाला रशियाचा पाठिंबा। दक्षिण आफ्रिकेत गोळीबाराच्या दोन घटनांमध्ये किमान 27 जण ठार। आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेत स्क्वॉशमध्ये अभय सिंहनं मिळवून दिलं भारताला रौप्य पदक। नेमबाजीत महिला आणि पुरुष संघाची उपांत्य फेरीत धडक।
1: रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हाँ, फाइनल में अभय सिंह को मलेशिया के एनईओ के हाथों 9-11, 5-11, 5-11 से शिकस्त का सामना करना पाए। स्क्वाश का मुकाबला था, लेकिन यहाँ पर उम्मीद जरूर थी अभय सिंह यहाँ पर गोल्ड जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से मलेशियाई खिलाड़ी ने उन्हें लगातार 3 गेमों में लगातार हराकर जीत दर्ज की, इसलिए उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अभय ने मुकाबले में जोरदार शुरुआत की और कई मौकों पर अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी चुनौती दी। तीसरे गेम में भी उन्होंने शुरुआत में बढ़त बनाने की कोशिश की, लेकिन एनईओ ने जल्द ही अपनी लय हासिल कर ली, मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया। इस जीत के साथ ही एनईओ लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों का पुरुष एकल खिताब अपने नाम कर लिया, जबकि अभय सिंह को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं अनाहत सिंह, जिसका मैंने जिक्र किया था, सबसे ज्यादा उम्मीदें अनाहत सिंह पर है। महिला एकल के फाइनल मुकाबले में सिंह सुवारी सुब्रमण्यम के खिलाफ उतरेंगी भिड़ेंगी। यहाँ भारतीय जरूर उम्मीद करेंगे कि गोल्ड मेडल यानी पीला तमगा है, लेकिन हाँ, आज का दूसरा पदक आ चुका, इससे

0: पहले आपको बता दें, अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम वजन वर्ग में पदक पक्का किया सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए। आज का दूसरा पदक यानी दो पदक भारत की झोली में अब तक आ चुके हैं।
1: With these two brilliant news, we can absolutely say that it is in total a very mixed day for India today. So now we take a complete update from women's specific draw, where India have had a difficult day in Group B. India began their women's doubles campaign against South Korea but went down 0-2. South Korea took the opening game 15-8 before winning the second 15-3 to wrap up the match in straight games. India were back on court later in the day for their second Group B encounter, this time against the Philippines, and they came away with another state games victory for Philippines, winning 15-12, 15-6. So India have now suffered two defeats in two Group B matches, losing both encounters 0-2.
0: घुड़सवारी की बात कर लेते हैं। आईसी नागोया में भारत का जो घुड़सवारी का अभियान है वो समाप्त हो गया। जी हाँ, एशियन गेम्स में जिस तरह से उम्मीद की थी, पिछली बार जिस तरह प्रदर्शन था वैसा प्रदर्शन इस बार देखने को नहीं मिला। हृदय छेदा 72.680 के स्कोर के साथ इंडिविजुअली ड्रेसेस फाइनल में 8वें स्थान पर रहे, जबकि उनके साथी जयसूद 71.490 के स्कोर के साथ 9वें स्थान पर रहे। हाँ, यहाँ पर एक और खबर दे दें, इंडिया वर्सेज वियतनाम। जी हाँ, भारत बनाम वियतनाम का जो वॉलीबॉल का मुकाबला चल रहा, भारत ने 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली है। अगर बताएं पहले सेट की बात करें तो भारत ने 25-23 से वहां पर अपना जो सेट था वो जीता था। जेरेमी विनीत ने पहले सेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 अंक अर्जित किए थे। यहाँ पर भारत ने अब दो जो सेट है अपने नाम कर लिया। पहला सेट जैसा मैंने बताया 25-23 से, दूसरा सेट 23-18 से जीत लिया, यानी दूसरे सेट में भारत ने और बेहतर प्रदर्शन किया है और देखना है कि भारत आगे किस तरह प्रदर्शन करेगा। हालांकि अब स्कोर ताजा अपडेट बता दें, दोनों के तीसरे सेट में 1-1 अंक बने हैं। विदुषी,
1: Absolutely. Now let's move on to the surfing update of the day, where India has had mixed results in the women's and men's short board events. Starting with the women's competition, Kamali Murthy was in action in round 3 against Indonesia. She scored 5.93 across two waves, while her Indonesian opponent finished with 11.64, bringing Kamali's campaign to an end. Now Shanti Sugargayan also bowed out in round 3 up against Japan. Sugar finished with 5.17, while her Japanese opponent scored 14.60. So both women Indian surfers have now exited the competition after reaching round 3. Moving on to the men's event, Sivaraj Babu was in action in round 2 where he faced Iran's Khadir. Sivaraj produced a strong score of 8.96, comfortably ahead of Khadir's 3.60. And we also mentioned Kishore, who is already qualified to round 3. So both Kishore and Sivaraj are now through to round 3. But that stage is yet to take place and is scheduled for tomorrow.
0: ये बताते हुए श्रोताओं की भारत के 4 गोल्ड, 13 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज समेत 31 पदक हो गए। अगले 1 घंटे बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: जी, एशियन गेम्स की अपडेट्स के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है आपके अपने प्रोग्राम हिट एंड हॉट में, जहां आप हमें बता रहे हैं बहुत सारी बातें और उन्हीं के जरिए आपके साथी सुनने वाले हो रहे हैं लुत्फानंदोज़। और बहुत सारे गाने, बहुत ही खूबसूरत से गाने और बहुत ही खूबसूरत सी बातों का सिलसिला चल निकला। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी हैं जिन्होंने हमें ये कहा कि आप किसी भी गीत में हमारे नाम को शामिल कर लें, और इसी तरीके के बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आए, जैसे कि मुकेश कश्यप जी हमें जिला मुरादाबाद दुल्हापुर ग्राम उत्तर प्रदेश से मैसेज कर रहे हैं और कई सारे नामों को शामिल करने को बोला है। मुकेश कश्यप जी, शीतल कश्यप जी, सोनू सुरेश जी, राजपाल पंकज जी, काजल सीमा जी, मानवी तन्वी जी, लक्ष्य

मोहिनी जी, मोहिनी ऋतिक जी, बलवीर सिंह जी, आप सभी का देखिए नाम शामिल हो गया है। और हमारे पास प्रमोद जी का धन्यवाद आ गया है। विजेंद्र जी ने हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं और बहुत सारी फरमाइशें भेजी हैं, उनका भी नंबर बहुत जल्दी आएगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और अब चलते हैं एक फरमाइश की ओर जी। तो हमारे पास अगला मैसेज जो है वो है रविंद्र जी का, जो फरमाइश करते हैं चांदनी फिल्म से, चांदनी टाइटल ट्रैक से जो गाना है उसको सुनने की। तो बगैर देरी हम उस गाने से आपको जोड़ते हैं। आप ये मोहब्बत हमारा साथ यूं ही बनाए रखिए, सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई और अपने दिल की आवाज आदित्य को।

一起。

हमारे पास एक मैसेज और आया है, कई सारे नाम शामिल हैं इसमें और ऐसा कहा गया है कि किसी भी गीत में शामिल कर लिया जाए, तो आपका पहले नाम शामिल कर लेते हैं फिर आपको गीत सुनाते हैं। तो वाणिंग खेड़ा से हमें पंजाब से मैसेज आया है, मिंटू थॉमस, पिंकी जी, लवली जी, आरती जी और अरोड़ा जी, आरती अरोड़ा जी ऐसा नाम होगा आपका। खैर, तो आप की देखिए फरमाइश हम तक पहुंच, आपकी बात हम तक पहुंच गई और हमने आपका नाम भी ले लिया है। और हमारे पास एक फरमाइश ऐसी ही और आई है, यशमीत यशु जी और निरंजन सिंह जी, सौम्या सिंह जी, अविरल जी हमें सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से मैसेज करते हैं और कहते हैं कि महेंद्र कपूर जी की किसी भी गीत की फरमाइश में आप शामिल कर लें। जी महेंद्र कपूर जी के गीत तो हम सुना चुके हैं आपको। खैर, अब एक और गीत उसी अंदाज का, उसी दौर का सुनवाने वाले हैं आपको, उसमें ज़रूर आपका नाम शामिल हो जाता है, जिसकी फरमाइश हमारे पास भेजी है राकेश माथुर साहब ने।

अगले गाने की फरमाइश हमारे पास भेजी है पंकज मोहन साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत सी फरमाइश है, और ये भी यश चोपड़ा जी की बर्थ एनिवर्सरी को

वो ध्यान में रखकर सुनी जाए, क्योंकि उन्हीं के फिल्म से जुड़ा हुआ ये गाना है, दिल तो पागल है मूवी से ये गाना सुनेंगे। और इस गाने में जो आवाज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो लता मंगेशकर जी की और उदित नारायण साहब की हैं।

जी, अगला गाना जो आप सुनने जा रहे हैं वो बेहद नाराजगी के साथ हमारे पास आया है, और हम इस नाराजगी से भी नाराज नहीं होते क्योंकि हमें लगता है कि जो इंसान किसी को अपना मानता है उसी से खफा भी होता है। तो आपको नाराज होने का पूरा हक है, अधिकार है। आप जब भी नाराज होते हैं हमें लगता है आप थोड़ा सा हमारे और करीब आ गए हैं, और ऐसी नाराजगी व्यक्त की हमारे पास फिरोज सिगानपुरिया साहब का मैसेज आया।

और आप कह रहे हैं कि हम मेहनत करके चुन चुन के गाना आपको भेजने के लिए कहते हैं और लोग कहते हैं कि आप सिर्फ मेरा नाम बोल दीजिए आप बात ओके डोनेट ठीक है मतलब कुल मिला के नाराज़गी भरी बात ही है आपकी। तो देखिए आपकी नाराज़गी शायद दूर हो जाए क्योंकि आपने जिस गाने की फरमाइश भेजी है हमने वो गाना क्यों कर लिया है और आप तक पहुंचने के लिए वो गाना बेताब है।

1:55 का वक्त और ये वक्त हमारे विदा लेने का है। और विदा लें उससे पहले हम आपको कुछ नाम पढ़ के सुना देते हैं जिनका हम शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, सबका पहले तो सामूहिक तौर से शुक्रिया। और हो सकता है कुछ लोगों के नाम ना पढ़े जा सके हों, अगर छूट गए हों तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो विजेंद्र जी का मैसेज हमारे पास आया और आप क्या भेजते हैं? बाय आदित्य जी। अच्छा ओके ठीक है, बाय बाय। और अच्छा थैंक्स आ गया है हमारे पास फिरोज जी का। और प्रणव शिंदे जी का मैसेज आ गया है, आज के तीनों शो बहुत खूबसूरत रहे, बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आए तो इसका मतलब आप अच्छे इंसान हैं, इसलिए आपको दूसरों की चीज़ें अच्छी लग रही हैं। और जी आप दत्ता केदार साहब, आपका मैसेज हमारे पास पहली बार आया है और हम चूक गए इसको पढ़ने के लिए, तो हम माजर चाहेंगे। अभी हम आपका नाम शामिल कर लेते हैं, आइंदा जब कभी हम होंगे तो आपका गाना ज़रूर प्ले करेंगे। काजल कक्कड़ जी की फरमाइश हमारे पास आई और नॉट प्लेइंग माय सॉन्ग, आपने इतने खूबसूरत से गाने की फरमाइश हमें भेजी थी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के गाने हम इसलिए भी देर से प्ले करते हैं क्योंकि वो उस फहरिस्त में किन गानों के बाद कौन सा गाना अच्छा लगेगा तो उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ता है। तो कभी कभी आपको अपनी फरमाइश हो सकता है देर से सुनने को मिले, लेकिन सुनने को मिलेगी ऐसा

हमारा दावा रहता है या हम कोशिश करते हैं ऐसे बोल सकते हैं। राकेश माथुर साहब का थैंक यू आ गया है, पंकज जी का थैंक यू आ गया है, हीरा मणि साहब भी हमें सुन रहे थे, अभिजीत जी, गोपाल जी, वैदेही जी और रविंद्र जी, हरजिंदर जी, यशवंत जी और शुभ लक्ष्मी जी, मैं मुकेश कश्यप जी, प्रमोद जी, मिंटू जी, अमित भगत जी, डिकैस्ट्रो जॉन साहब, यशमीत जी, विजय महोबिया साहब और अजय सकरे साहब, राजेंद्र परमार जी, दीपा पालकर जी, श्रद्धा कर्णिक जी, आकांक्षा जी, संजय दर्शन जी, हितेंद्र दास जी और नरोद जी, दिग्दर्शन और कविता जी, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया हमें मैसेज भेजने के लिए। और अंत में जाते जाते आप उस गाने को सुनेंगे जो कभी विदाई की बात नहीं कहता है और हर वक्त लगता है कि कुछ वक्त ये लम्हा और ठहर जाए और रुक जाए और उस लम्हे को जी लिया जाए, लेकिन वक्त भी वक्त की नियत है गुजरना, तो उसे गुजरना ही होता है। खैर, हम अभी के लिए विदा लेते हैं, बहुत जल्द ही आपसे फिर कभी मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया आपका।

0: India made a strong start to its Asian Games archery campaign in Aichi, Nayoga today, with the men's and women's compound teams advancing to the semifinals along with the recurve. India today clinched two silver medals in squash. India's Abhay Singh won silver in the men's single squash. In the final, he lost to Malaysia's EON 11-9-11-5-11-5. The world number 26 Indian was unable to match the number 18 Malaysian, who defended his Asian Games title with a commanding straight games victory. In women's single squash, Anahat Singh also bagged silver as she played the final against Malaysian Sivashankari Subramaniam. Earlier, Ankush Fangal assured India of his first boxing medal at the Games after defeating Tajikistan's Nekruz Salimov 5-0 in the men's 80-kilogram quarterfinal today. India is now on the 11th position in the medals tally with a total of 32 medals, including 4 gold, 14 silver and 14 bronze medals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says surgical strike and Operation Sindoor demonstrated new example of India's counter-terrorism policy to the world, sending message that terrorist attacks will be met with befitting response. Prime Minister Modi in his Mann Ki Baat program on Akashvani urges people to work together for Nasha Mukti Yuva. Prime Minister urges people to participate in census and use self-enumeration facility, says first phase of census nearly complete. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel flag off country's first LNG power train at Sabarmati. Anahat Singh red alert for heavy to very heavy rainfall issued over Uttarakhand and West Uttar Pradesh for today. And in Asian Games, Anahat Singh bagged a silver. Abhay Singh wins silver in men's single squash. Boxer Ankush Fangal assures medal. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Farhat Naz. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। आगे भी आतंकवादी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी

0: सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
0: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
0: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ, यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
1: श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
0: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
0: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है।
0: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। थाईलैंड के पंथोन थीरखानोन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान गणेश के लिए अपार श्रद्धा विदेश में भी है। वहां भगवान गणेश की पूजा का फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब JNPT मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए ट्रैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता 2 गुनी हो जाएगी।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।

0: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
1: थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता काफी नहीं होगी बल्कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता भी महत्वपूर्ण है। एक रक्षा सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है जिसके लिए क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता भी तेजी से विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का स्टार्टअप अभियान रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया जिसने एक जीवंत उद्यमिता संस्कृति की नींव रखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोले। पिछले दशक में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है जिससे 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बेंगलुरु को भी इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा पहुंचा है। यहां 17,000 से अधिक स्टार्टअप्स का केंद्र है जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादों का डिजाइन और इंजीनियरिंग कर रहा है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म या सी कैंप भारत का प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन हब है और सबसे बड़े लाइफ साइंसेस इंक्यूबेशन में से एक है। इनएक्सेल के सह संस्थापक और निदेशक नीतीश कुमार जांगीर आकाशवाणी से बात करते हुए सी कैंप और भारत सरकार से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया है।
3: इनएक्सेल में हमारा जो विजन है इस टू मेक श्योर की जो नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके कि आप जो पीएचसीज हैं और जो लास्ट माइल हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम नवजात शिशु की जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करें, एआई के थ्रू अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे ये गैप को कम से कम करें, मैटरनल मोर्टेलिटी है जो मदर्स की डेथ रेट है और उसको हम कैसे कम करें, आईसीयू में हम और कैसे इम्प्रूवमेंट लाए। इनएक्सेल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सपोर्ट मिला है।
2: स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न एक सहायक इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं जिससे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न देश अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सके और एक वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर सके। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अब पर्यटन रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी रहा है। श्री शेखावत ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता देश के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का स्रोत बननी चाहिए। एशियाई खेलों में आज अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी से हार गए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। वहीं तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रिकर्व और कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कृषि विभाग आगामी

0: मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन उत्पादकता स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर भी वे विचार विमर्श करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के आधिकारिक दौरे पर केरल पहुंचे। वे कोल्लम के अमृतापुरी में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता अमृतानंदमयी का पूरा जीवन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा के संदेश से परिपूर्ण रहा है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ मिलकर नेपाल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए माता अमृतानंदमयी मठ की ओर से भारत में नेपाल के राजदूत सुरेंद्र थापा को 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री लावरोव ने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: Welcome to your latest Asian Games update. It has been a day of twists and turns for India with plenty of action and more medals coming our way. I am Vidushi Vats with Shahid Azmi and let's begin with the latest update where we take you straight to squash court where India has just added another silver medal to the tally. Well, Abhay Singh had already set the tone earlier today when he went into the men's singles final with a gold medal opportunity taking on Malaysia's contender. But after a hard-fought campaign, Abhay went down 0-3 in the final with Malaysia taking the gold. So Abhay Singh brings home the silver medal for India. And then, almost immediately, came another huge opportunity in women's singles where Anahat Singh was also playing for gold. And once again, the opponent was Malaysia. And it was another 0-3 result in favor of Malaysia. Anahat Singh, therefore, finishes with the silver medal as well. So what a strange twist in the squash story today. India had two individual finalists. Both had a shot at gold and both gold medals went to Malaysia. But at the same time, India comes away with two valuable silver medals from the squash courts. The important positive that we have, having both Abhay Singh and Anahat Singh reach the individual finals in a significant achievement for Indian squash, and both have now returned from these Asian Games with silver medals. So what does this mean? It means that India's medal tally has now moved up again. We now have 32 medals in total, including 4 gold, 14 silver and 14 bronze.
3: विदुषी, एक मेडल और इसमें ऐड कर लीजिए। वो कैसे, बताता हूँ। महिलाओं के 65 किलोग्राम भार वर्ग में जो बॉक्सिंग का मुकाबला था, वहाँ क्वार्टर फाइनल में भारत की परवीन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमुआ को 5-0 से हरा दिया है। परवीन ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक और प्रभावी बॉक्सिंग का प्रदर्शन किया। पहले राउंड में उन्होंने 4-1 की बढ़त बनाई। इसके बाद दूसरे राउंड में परवीन ने अपने प्रदर्शन को और बेहतर करते हुए सभी जजों से 5-0 का फैसला अपने पक्ष में कराया। तीसरे और अंतिम राउंड में भी परवीन ने अपना दबदबा कायम रखा। 5-0 के स्कोर के राउंड से, जो 5-0 का स्कोर था उसके साथ अपने पक्ष में किया। इस तरह तीनों राउंड में, जो तीनों राउंड का प्रदर्शन था उसके आधार पर जजों के सर्वसम्मत फैसले से परवीन ने 5-0 से मुकाबला जीत लिया। इस जीत के साथ परवीन ने महिला 65 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत के लिए एक पदक और सुनिश्चित हो गया है। आपको यह भी बता दें कि आज ही अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 80 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में

0: शानदार जीत दर्ज करते हुए भारत का बॉक्सिंग में पदक पक्का किया था.
1: Didn't we say this is a day of twists and turns and welcoming of medals? So as we continue this roller coaster of an update, it is important to remind you of another one of the brightest stories from today's action. That is, alongside the silver medals coming in from squash and other sports, the Indian archery contingent has given us plenty to celebrate as well, with strong performances across both recurve and compound. If we take a look at how Indian archers have made it a really encouraging day, is when in recurve men's team defeated China and booked their place in semi-finals. The women's team defeated Chinese Taipei and did the same. The mixed recurve team beating Vietnam after an earlier victory over the UAE, which means three Indian recurve teams are now through to the semi-finals. But the good news still does not stop there, because the compound teams have also reached the semi-finals like that. And we now have the semi-finals match that we look up to on September 30th for compound and on October 2nd for recurve events. So after the excitement and silver medals from squash, this is another really bright spot for India today.
0: बात कर लेते हैं वॉलीबॉल की, जहां भारत को जीत हासिल हुई. एशियाई खेलों के पुरुष वॉलीबॉल के पूल सी के मुकाबलों में भारत जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, उसको कौन देखते हुए आज का जो मुकाबला था बेहद खास था. वियतनाम को 3-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की. भारत ने पूरे मुकाबले में दबदबा बनाए रखा और तीनों सेट अपने नाम कर लिए. पहले सेट में भारतीय खिलाड़ियों ने कड़े मुकाबले के बाद 25-23 से बाजी मारी. दूसरे सेट में भी भारत ने अच्छी लय बरकरार रखी, 25-21 से जीत दर्ज की. और तीसरे सेट में भारत ने शुरुआत से जो बढ़त बनाए रखी थी उसे जारी रखी और 25-20 से सेट अपने नाम कर 3-0 से मुकाबला जीत लिया. इस जीत के साथ ही भारत ने पुरुष वॉलीबॉल के पूल सी में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. भारतीय टीम अब अपने अगले मुकाबले में हांगकांग चीन का सामना करेगी. यह मैच 28 सितंबर यानी कल खेला जाएगा. खबरें और हैं, लगातार मुकाबले जारी हैं, लेकिन फिलहाल इस घंटे की अपडेट में इतना ही. मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी बस को इजाजत दीजिए. अगले घंटे फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद.
2: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: Welcome to the Asian Games Early Update. This is Vidushi Vats with Shahid Azmi bringing you early latest updates of the games that are going. As we look back, you know, at the Indian campaigns that came to an end today, there were certainly some tough exits, but there were also several fighting performances and valuable experiences for the athletes and the teams. Let's start with badminton, where India's individual campaign came to an end today, where PV Sindhu, Unnati Hooda and the women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand all saw their Asian Games journeys conclude at the quarterfinal stage. There were of course some challenging moments along the way, but reaching the knockout stages itself meant India remained firmly in contention in the individual events. Moving to fencing, the Indian women's sabre team also saw their campaign come to an end in the quarterfinals. There were also individual exits in fencing today, bringing several Indian campaigns to close after some competitive bouts. Surfing also gave us a mixed picture in the women's shortboard. Kamali Murthy and Shanti also had their issues where they both bowed out in round 3, bringing Indian women's campaign in the event to an end, but still something to look forward to in the men's competition with Siva Rajbabu as well as Kishore. When it comes to Kurash as a discipline, also saw some several Indian campaigns concluding today with Yash and Vishal and Sangeeta and Bharti all suffering exits in their respective categories. But it wasn't all about exits today. Boxing provided a plenty of encouragement to us, and squash gave India something to celebrate with the Indian contingent securing silver medals, adding to the country's medal tally and providing another highlight from the day.
2: विदेशी पिछले एक घंटे में मात्र एक मुकाबला जो भारत का खेला गया वो बॉक्सिंग करा 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के सचिन सिवाच का सफर क्वार्टर फाइनल में खत्म हो गया समाप्त हो गया। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता सचिन को जापान के शुनसुके कितोमोतो के खिलाफ 0-5 से हार का सामना करना पड़ा। सभी जजों ने मुकाबला जापानी मुक्केबाज के पक्ष में दिया। सचिन ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक अंदाज में करने की कोशिश की, लेकिन कितोमोतो ने अपनी लंबाई, रक्षात्मक तकनीक और सटीक पंचों के जरिए भारतीय मुक्केबाज पर दबाव बनाए रखा। सचिन अपनी लय हासिल नहीं कर सके और मुकाबले के दौरान उन्हें वापसी का कोई भी मौका नहीं मिला। इस हार के साथ सचिन सिवाच पदक से एक कदम दूर रह गए। इससे पहले आज महिला 65 किलोग्राम भार वर्ग में जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला था वहां भारत की परवीन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उज्बेकिस्तान के नवखोर खादिमों को 5-0 से हरा दिया। परवीन ने पहले राउंड में 4-1 की बढ़त हासिल की। उसके बाद परवीन ने अगले दोनों राउंड 5-0-5-0 से जीतकर तीनों राउंड के प्रदर्शन के आधार पर जजों ने सर्वसम्मत से परवीन को 5-0 के से विजेता घोषित कर दिया। इस जीत के साथ परवीन ने महिला 65 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत के लिए एक पदक और भी पक्का उन्होंने कर लिया। आपको यह भी बता दें, इससे पहले आज ही अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज करते हुए भारत का बॉक्सिंग में एक और पदक किया था।
1: Now that we have looked as to all the matches that have taken place, all the disciplines that have happened, it's important to look as to what we have in the next few hours. Right now, right at this moment, the Indian women's hockey team is taking on Singapore with their Pool B match getting underway. Also in athletics, the women's long jump final is getting underway right now with Shailee Singh and Nancy Sojourn in action. Later today at 3:55, we have Harita and Unnati line up in the women's 200 meter final, followed at 4:05 by Animesh Kujur in the men's 200 meter final. Furthermore, we also have men's high jump final where Sarvesh and J. Adarsh Ram will be looking to challenge for the medals. And later, we also have women's 100 meter hurdles final where Nandini will be competing for us.
2: जी बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण मुकाबले बाकी हैं और यहाँ पर भारत जीतता है तो यकीनन उसके जो पदक का जो तालिका है उसमें इजाफा होगा और भारत की जो अभी रैंकिंग उसमें भी इजाफा होगा। फिलहाल अगर बता दें जो पदक तालिका चल रही है उसमें चीन सबसे ऊपर है 114 गोल्ड और इसके अलावा 44 सिल्वर 33 ब्रॉन्ज समेत 191 पदक के साथ सबसे ऊपर है। जापान दूसरे स्थान पर 33 स्वर्ण 54 रजत और 55 कांस्य समेत 142 पदक जीते हैं, जबकि कोरिया के नाम 18 स्वर्ण 22 रजत और 38 कांस्य समेत 78 पदक। है। वहीं भारत 12वें स्थान पर है, 4 स्वर्ण 14 रजत 14 कांस्य समेत 32 पदक भारत के खाते में यानी भारत की झोली में आ चुके हैं। और क्या अगले एक घंटे में होता है बिल्कुल आपको बताएंगे ठीक है घंटे बाद 4:30 पर। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए, अगले घंटे बाद मुलाकात होगी, धन्यवाद।
0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: आएगी। एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: जैसे जैसे शाम ढल रही है, एशियन गेम्स से भारत के लिए कई अच्छी खबरें आ रही हैं। उन खबरों को बताने के लिए एक बार फिर हाजिर हैं हम। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी, मेरे साथ हैं विदुषी वत्स से। तो चलिए इस घंटे के अपडेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताते हैं भारत की झोली में जो पदक आया। जी हाँ, एशियन गेम्स 2026 में एथलेटिक्स से भारत के लिए एक और पदक पक्का हो गया है। महिला 100 मीटर दौड़ के फाइनल में भारत की हरिता भद्रा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 23.20 सेकंड का समय निकालते हुए तीसरा स्थान पर रहते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। हरिता ने पूरे फाइनल में दमदार चुनौती पेश की और पोडियम पर जगह बनाकर भारत की पदक तालिका में एक और पदक जोड़ दिया है। वहीं इसी स्पर्धा में भारत की दूसरी धाविका उन्नति बोलन भी फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन छठे स्थान पर रहते हुए उन्होंने अपना जो अभियान था वो समाप्त किया। इस तरह महिला 100 मीटर में भारत के खाते में ब्रॉन्ज मेडल आया और एथलेटिक्स में देश की पदक की संख्या में इजाफा हुआ। जिस तरह से हरिता भद्रा ने दिल्ली में इंडिया ओपन में भी प्रदर्शन किया था और यहीं पर उन्होंने अपनी बातचीत में आकाशवाणी से बताया था, मैं 23 से ऊपर अगर एशियन गेम्स में करूंगी तो यकीनन पोडियम फिनिश करूंगी, और ऐसा ही उन्होंने कर दिखाया।
2: And what a moment for India, what a moment for India, another medal coming in athletics, and this is turning into a day where the Indian contingent is really showing its strength across disciplines. We have already seen the silver medals in squash from Abhay Singh and Anahat Singh, and now Harita adds a bronze in the women's 200 meters. The medals are coming, the performances are coming, and importantly, the momentum is building. And speaking of powerful performances, the medal hopes are right up there in athletics as well, because we are watching live the women's long jump final right now, and India has two strong contenders in the field. Ansi Sojan dominating it right now, currently sitting at the top of the standings with the best jump of 6.49 meters. Her first attempt was 6.49, the second one invalid, the third again came at 6.46, and despite that, Ansi remains at the top. And other contender Shali Singh is currently in fourth position with 6.34 meters. Her first attempt was 6.25. She improved to 6.34 on her second and has matched that distance again with her third attempt. So there is plenty to watch, plenty to cheer for, and plenty still to come.
1: एशियन गेम्स में लगातार उठा पटक का दौर जारी है। डेकाथलॉन की बात करेंगे, पुरुषों की स्पर्धा में जेवलिन थ्रो में भारत के तेजस्विन शंकर ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। तेजस्विन ने अपने 3 प्रयासों में, जो पहला प्रयास था उनका 46.29, दूसरा प्रयास था 53.37 जो सबसे बेस्ट उनका प्रयास था, इसके बाद हालांकि तीसरे प्रयास में उन्होंने 51.81 मीटर का थ्रो किया, लेकिन उनका जो सर्वश्रेष्ठ थ्रो था वो 53.37 मीटर रहा है। जेवलिन थ्रो के बाद डेकाथलॉन में तेजस्विन शंकर की चुनौती बताएं तो अंतिम इवेंट 1500 मीटर दौड़ जो वो अभी खेली जा रही है, वहां डेकाथलॉन में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर आकलन के सभी 10 स्पर्धाओं में जो हासिल किए अंकों के आधार पर किया जाता है, वहां फैसला होगा कौन पोडियम पर पहले स्थान पर रहता, कौन दूसरे, कौन तीसरे। हालांकि अभी तेजस्विन शंकर तीसरे स्थान पर बने हुए हैं।
2: And while we continue to follow the result coming in from athletics, there is an update from the men's 200 meters final as well. Animesh Kujur finished 5th, clocking 20.80 seconds in the final and missing the podium. Now let's move on to another men's event happening live right now. That is the men's high jump final with Sarvesh Kushare and Jyoti Shankar representing India. Jyoti Shankar has cleared 2 meters and is currently sitting in 6th position, while Sarvesh remains in contention as the competition continues. Another medal opportunity is very much in focus as the athletic action continues.
1: एक और मेडल इवेंट की बात करते हैं जहां भारत को होप है, भारत को उम्मीद है यहां पर पदक जरूर आएगा, वो है हॉकी। और हॉकी में महिला हॉकी टीम जिस तरह से लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए आ रही है, उसी का एक आधार यहां भी दिखाई दे रहा है। सिंगापुर के खिलाफ भारतीय महिला

0: जिस तरह प्रदर्शन कर रही, 5-0 की एक भारी भरकम लीड ले चुकी। तीसरा जो क्वार्टर है वो जारी है। आपको ये भी बता दें, भारत ने जो 5 गोल स्कोर किए वो दूसरे क्वार्टर में गोल किए थे, दूसरे क्वार्टर में उन्होंने 5 गोल स्कोर किया। हालांकि तीसरा क्वार्टर जो है अभी जारी है, वहां पर कोई गोल नहीं हो सका। लेकिन जिस तरह से मजबूती से भारतीय टीम प्रदर्शन कर रही है, लगातार गोल कर रही है, यकीनी तौर पर माना जा रहा है ये भी एक टीम साबित होगी जो पदक के यानी पोडियम पर पहले दूसरे स्थान पर दिखाई दे सकती है।
1: एंड विद दीज अपडेट्स वी आर स्टिल वेटिंग फॉर रिजल्ट्स, ब्रिंगिंग इन मोर एथलेटिक मैचेस एंड लाइव अपडेट्स टू यू आफ्टर एन आवर। एंड विद दिस, दिस इज विदुषी वत्स विद शाहिद आजमी। स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी।
2: एशियन गेम्स 2026, आईची नगोया।

हाँ जी वेले, ये गाना आपने सुना स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। संडे की शाम है भाई, असी वेले सानू वेले कहंदे सानू की, बिल्कुल बनता है आज तो। और वीकेंड है तो इसको एंजॉय करने का एक तरीका ये भी है कि आप एफएम रेनबो पर इस तरह के धमाकेदार गाने सुने। आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, शर्मीन संग शामिल अगर हो चुके हैं तो हाजिरी लगाइएगा 8657661071867667 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। शेखर और विशाल गा रहे थे इस गाने को, अनविता दत्त ने इसे लिखा, विशाल एंड शेखर की कॉम्पोजिशन थी। और लव यू जिंदगी इस प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है इस गाने के साथ ही। देखिए संडे इवनिंग का ये जो वक्त होता है ना, ये थोड़ा ऐसे स्लो भी होने का होता है ना, कि वीकेंड खत्म होने वाला है, मंडे अभी दूर से ऐसे हाथ हिला रहा है, हेलो आ जाओ। लेकिन हम क्या, हम प्रिटेंड ऐसे करें कि हमने उसको देखा ही नहीं। लेकिन आज की बात थोड़ी सी उस हैप्पीनेस के बारे में है जो किसी चीज़ के ना होने पर नहीं, बल्कि किसी चीज़ के होने का इंतज़ार करते हुए भी मिलती है। लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होना कितना अच्छा लगता है ना, कि जिसका हम वेट कर रहे हों बेसब्री से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी वो एक्साइटमेंट जो है वो एक्चुअल मोमेंट से भी कहीं ज़्यादा अच्छी होती है और हमारा मूड जो है वो बेटर बनाती है। कभी एक छोटी सी आउटिंग, कभी फेवरेट पर्सन से मिलना, कभी कोई मूवी, कॉन्सर्ट, ट्रिप या बस वीकेंड पर अपनी फेवरेट डिश खाना। कभी नोटिस किया आपने, जब हमें पता होता है कि वीकेंड पर कुछ अच्छा होने वाला है तो पूरा वीक थोड़ा ऐसे मैनेजेबल लगने लगता है ना? तो उसी खुशी की आज हम लव यू जिंदगी में बात करेंगे। और गाने तो भैया ऐसे ही धमाकेदार मस्त वाले होने वाले हैं, सो बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 एफएम रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स। लकीर इस फिल्म से आएगा ये गाना, कुणाल गांजा वाला गाएंगे, महबूब ने इसे लिखा, ए आर रहमान की कॉम्पोजिशन।

बेनी दयाल की आवाज में सुना अपने बेफिक्रे इस फिल्म का टाइटल ट्रैक। जयदीप सहानी ने इसे लिखा, विशालन शेखर की कॉम्पोजिशन थी। आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप और लव यू जिंदगी ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम बात करें कि किस तरह से कभी कभार जो हम कुछ प्लान कर रहे होते हैं आगे ये करना है, तो वो एक्चुअल चीज होने से पहले की जो एक्साइटमेंट होती है उसके बारे में हम बात करें कि कभी किसी आउटिंग का प्लान बना दिया या किसी आपके चहीते इंसान से मिलना हो आपको, है ना, किसी कॉन्सर्ट में जाना हो, कोई मूवी देखनी हो, तो उससे पहली की जो हमारी एक्साइटमेंट होती है, उस वो जो खुशी होती है, वो मेन मोमेंट आने से पहले ही हम जो है कितना कुछ उसके बारे में सोच लेते हैं और खुश खुश घूमते रहते हैं। तो आपने ये कभी नोटिस किया है ना कि जब हमें पता होता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, स्पेशली वीकेंड के बड़े ही हमारे सुहाने से प्लान्स होते हैं, और इस वजह से भी पूरा हफ्ता जो है वो भले ही कैसा भी गुजरा हो, लेकिन वो हम ये सोचते रहते हैं कि चलो नहीं वीकेंड पे तो कुछ अच्छा होगा। मंडे से फ्राइडे तक काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रैफिक, डेडलाइन सब चल रहा होता है, लेकिन माइंड के किसी कोने में एक छोटा सा थॉट ये भी होता है कि बस इसके बाद वो प्लान है, फिर मज़े ही मज़े हैं। और शायद इसी को एंटिसिपेशन की हैप्पीनेस कह सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं कि कोई

आई वेंट यो एक फेवरेट शो का नेक्स्ट एपिसोड देखना हो, घर पर मूवी नाइट या किसी दोस्त के साथ कॉफ़ी पीना हो, या संडे को बिना अलार्म के सोना भी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खुशी होती है भाई। इसके बारे में सोच के भी कई सारे लोग खुश हो जाते हैं। कभी कभी हैप्पीनेस डेस्टिनेशन में नहीं, उस डेस्टिनेशन की तरफ जाते हुए रास्ते में ही मिल जाती है। और मुझे लगता है कि लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो होना भी चाहिए, होना ज़रूरी है, क्योंकि हर दिन जो है वो कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो ऐसे नहीं हो सकता, है ना। कुछ दिन बिल्कुल ही नॉर्मल होते हैं, रूटीन सेम होती है, रोड्स सेम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन अगर कैलेंडर में एक छोटा सा सर्कल बना हो कि सैटरडे को मूवी जाना है, नेक्स्ट वीक जो है वो डिनर विथ फ्रेंड्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ हो आपके कैलेंडर पे, तो वो ऑर्डिनरी डेज के बीच में भी ना ये ऐसे सितारे चमकने लगते हैं खुशी के। तो उसी खुशी की आज हम लव यू जिंदगी में बात कर रहे हैं, और गाने ऐसे मस्त धमाकेदार प्ले हो रहे हैं कि क्या ही बताएं। आपके मैसेजेस मुझे बता रहे हैं कि आप इन गानों को एंजॉय कर रहे हैं। मीका सिंह गाएंगे, जयदीप सहानी ने इसे लिखा, प्रीतम की कॉम्पोजिशन, दिल बोले हड़िप्पा का ये टाइटल ट्रैक आ रहा है आप लोगों के लिए। आप भी सुनते सुनते नाच लीजिए और बने रहिए इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 एफएम रेनबो पर। क्यों? क्योंकि हम ही तो हैं म्यूजिकली योर्स।

झूम बराबर झूम का टाइटल ट्रैक आपने सुना शंकर महादेवन की आवाज में. और संडे की इस इवनिंग हम गाने ऐसे प्ले कर रहे हैं जो आपको झूमने पे मजबूर कर दें. आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप. लव यू जिंदगी ये प्रोग्राम चल रहा है. और अभी जो गाना आपने सुना झूम बराबर झूम का, उसे लिखा था गुलजार साहब ने, शंकर एहसान लॉय की कॉम्पोजिशन थी. और जी लव यू जिंदगी में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम जो है ना कोई अगर प्लान बनाते हैं तो उसके होने से पहले की जो एक्साइटमेंट है, जो खुशी हमें मिलती है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि कैसे कहीं किसी फ्रेंड से मिलना हो या कहीं जाना हो, मूवी देखना हो, तो हम जो है बहुत ज़्यादा ऐसे एक्साइटेड फील करते हैं वो मोमेंट, वो इवेंट होने से पहले. और कभी तो हम प्लान बनाते वक्त ही बड़े ही खुश होने लगते हैं. आउटफिट क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे. एक्चुअल आउटिंग 2 घंटे की होती है, लेकिन प्लानिंग और एक्साइटमेंट उसकी कई दिनों से पहले से ही स्टार्ट हो जाती है ना. तो शायद लाइफ में भी हमें सिर्फ बड़े बड़े अचीवमेंट्स का वेट नहीं करना चाहिए, कभी कभी अपने लिए एक स्मॉल थिंग टू लुक फॉरवर्ड टू भी क्रिएट कर ही सकते हैं हम खुद के लिए भी, है ना. कुछ ना कुछ ऐसे नहीं है कि किसी अगर ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है आपके तो खुद अपने लिए ही कोई ऐसा इवेंट क्रिएट कर लीजिए आप. और संडे को हो या सैटरडे को हो या जब भी आप ऐसे कुछ दिन पहले का, फिर आपकी वो एक्साइटमेंट बढ़ती जाएगी और फिर जो वीक कितना भी बुरा गुजर रहा हो वो उतना फील नहीं होगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे वीकेंड पे जो आपका इवेंट है, जो मूवी आप देखने वाले हो या जहां आप जाने वाले हो उसके बारे में, है ना. वाओ, मुझे भी सोच के बड़ा ही जो है अपने आप में खुशी हो रही है. आए आपको थोड़ा और खुश करते हैं और ऐसे धमाकेदार और गाने सुनाते हैं. राबता से आएगा ये गाना, अरिजीत सिंह, नेहा कक्कर, मीट ब्रोस की आवाजें हैं, कुमार ने लिखा, सोवरो रॉय की कॉम्पोजिशन. मैं तेरा बॉयफ्रेंड, बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज़ वी आर म्यूजिकली या

देव नेगी राजा हसन की आवाजों में सुना आपने ये गाना जबरिया जोड़ी। इस फिल्म से प्रवेश मलिक, मोनाली ठाकुर भी इनका साथ दे रहे थे। शब्बीर अहमद, तनिष्क बागची ने इसको लिखा था। तनिष्क बागची की कॉम्पोजिशन थी। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। शर्मीन संग शामिल हैं आप। लव यू जिंदगी में हम बात कर रहे हैं आज उस एक्साइटमेंट की, उस खुशी की जो हम कोई प्लान बनाते हैं और वो एक्चुअल इवेंट होने के पहले जो हम खुशी महसूस करते हैं, एक्साइटमेंट महसूस करते हैं, उसके बारे में। नेक्स्ट वीक का ब्रेकफास्ट हो या कोई फेवरेट बुक हो, किसी फ्रेंड के साथ कैचअप, एक लॉन्ग ड्राइव, घर पर अपनी फेवरेट मूवी देखना, कुछ भी, बिकॉज हैप्पीनेस का मतलब हमेशा समथिंग अमेजिंग इज हैपनिंग राइट नाउ नहीं होता। कभी जो है वो हैप्पीनेस इतनी होती है कि हमारे पास कल के लिए एक छोटी सी एक्साइटमेंट है ना। और संडे इवनिंग पर तो ये फीलिंग और भी स्पेशल लगने लगती है। वीकेंड जा रहा होता है लेकिन नेक्स्ट वीकेंड कभी ना कभी तो आएगा ही ना, तो उसके बारे में भी आप प्लान करने लग जाते हो। इसी खुशी, इसी एक्साइटमेंट के बारे में हम आज बात कर रहे हैं लव यू जिंदगी में। और जैसे कि मैंने पिछले लिंक में भी आपसे कहा, अगर आपके पास ऐसा कोई आगे कुछ प्लान नहीं है आउटिंग का, मूवी का, तो बना लीजिए, है ना। फिर वो होगा नहीं होगा वो दूसरी बात है, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन करते हुए, उसके बारे में सोचते हुए कितना कितना ही खुश हो जाएंगे आप, है ना। ये सोचिएगा आप इस संडे की इवनिंग में। ये आपको थोड़ा सा डिल्यूजनल ही सही लेकिन हैप्पीनेस का एक नुस्खा समझ लीजिए। अभी उर्वशी के लिए गाना आएगा, बाकी सब भी सुन लीजिएगा। हमसे मुकाबला इस फिल्म से आएगा ये गाना। ए आर रहमान, शंकर महादेवन, नोएल जेम्स की आवाज़ें, पी के मिश्रा ने इसे लिखा। ए आर रहमान की कॉम्पोजिशन।

सुखविंदर सिंह की आवाज में सुना आपने ये गाना चिन्नम्मा मीनाक्षी टेल ऑफ थ्री सिटीज से। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल है आप और AR रहमान की कॉम्पोजिशन से सजा ये बहुत ही प्यारा गाना था लव यू जिंदगी में। आज हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम कुछ कोई प्लान बना लेते हैं किसी फ्रेंड से मिलने का, मूवी देखने का और कहीं घूमने जाने का, है ना। तो उससे पहले की जो एक्साइटमेंट होती है, जो प्रिपरेशंस होती हैं, उसके बारे में आज हम बात कर रहे थे। तो आज रात सोने से पहले अपनी लाइफ में एक छोटी सी चीज़ ज़रूर ऐसे प्लान करके रखिए जिसका आप वेट कर सकें, है ना। कोई बड़ा रेजोल्यूशन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं, बस समथिंग दैट मेक्स यू स्माइल व्हेन यू थिंक अबाउट इट। इसी थॉट के साथ जो है हम जो है अब ये जो लव यू जिंदगी का सारा एहतमाम हमने किया था, देखिए एहतमाम आ गया मतलब आप समझिए नेक्स्ट शो अंदाजे बयां होने वाला है। लेकिन उससे पहले 6 बजे न्यूज़ आएगी नागपुर सेंटर से, उसके बाद 6:15 बजे अंदाजे बयां आएगा। बहुत कम आज हमारे पास वक्त है क्योंकि फिर 6:30 बजे जो है वो अपडेट्स आएंगी और उसके बाद फिर से हम अपना अंदाज बयां प्रोग्राम शुरू करेंगे। सो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जिस लिहाज के उसमें गाने होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनाएं और शेर व शायरी भी रहेगी। तो आइएगा ज़रूर उस महफिल में, लेकिन लव यू ज़िंदगी से जाते जाते आए एक और धमाकेदार गाना आपको सुनाएं, जिस तरह के सॉन्ग्स आज हम पूरे लव यू जिंदगी में आपको सुनाते रहे। क्यों? क्योंकि आज है संडे, वीकेंड, और बस ये जो संडे है वो खत्म होने की कगार पर ही है। तो उससे पहले मंडे की सारी एनर्जी आपको जमा करनी पड़ेगी ना, तो उस तरह के गाने भी तो होने चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा है, कुछ ना कुछ आप जो है वो ऐसी चीजें प्लान करें जिसके बारे में आप सोच के खुश हो जाए, है ना, कि जब वो मोमेंट आएगा तो ऐसे करेंगे हम, वैसे करेंगे, किसी फ्रेंड से मिलना हो, कहीं कॉफी पे जाना हो, कोई आउटिंग हो, कुछ ना कुछ तो अपने लिए जो है इस तरह से सोच कर रखिएगा। और अब हम प्ले करते हैं मास्टर सलीम, नीरज श्रीधर, सूजी क्यू की आवाजों में आएगा ये गाना। इरशाद कामिल ने इसको लिखा, प्रीतम की कॉम्पोजिशन लव आजकल से आप सुनेंगे। आहू आहू

क्या बात है जगजीत सिंह साहब की खूबसूरत आवाज़ में ये गज़ल आपने सुनी, और इसी गज़ल के साथ शुरू हो गया है अंदाज़े बयां। अंदाज़े बयां की महफ़िल में आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। इस महफ़िल में इसी तरह की गज़लें, कव्वालियां, सूफ़ी सॉन्ग्स, एल्बम सॉन्ग्स हम प्ले करते हैं और कुछ शेर व शायरी आपको सुनाते हैं। अर्थ फिल्म से सुनी आपने ये गज़ल, कैफ़ी आज़मी साहब ने इससे लिखा था, जगजीत सिंह साहब की ही कॉम्पोजिशन थी। और जी, जहाँ मैंने आपसे कहा कि हम सूफ़ी गज़लें, कव्वालियाँ और सूफ़ी सॉन्ग्स इस तरह के गाने प्ले करते हैं और शेर व शायरी भी होती है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना, बहुत कम ऐसे वक्त मिलता है मुझे इवनिंग शो करने का और वो भी संडे को करने का, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अंदाज़े बयां की

जो सारी शायरी है, अशार हैं जो भी, वो हम हमारे इस संडे इवनिंग को डेडिकेट करें, बल्कि इतवार जो दिन है उसको डेडिकेट करें. तो सबसे पहले जो कई सारे लोगों को पता भी होगा ये शेर, और वो है मुनव्वर राना साहब का शेर, जो कहते हैं कि अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे मुझे, अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे मुझे, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए. आपको सुनाते हैं अगला गाना, जतिंदर पाल सिंह जी इसे गाएंगे, समीर नाजा महेश कुमार राव साथ देंगे, योगेश ने एडिशनल लिरिक्स लिखे हैं. ये एक्चुअली ट्रेडिशनल सॉन्ग है, अमीर खुसरो साहब का कलाम है, ओनी आदिल की कॉम्पोजिशन. अंग्रेजी में कहते हैं इस फिल्म से आ रहा है ये गाना.

0: Medal celebrations don't stop there. Another silver for India, this time in the men's high jump. Sarvesh Koshari has done it. A brilliant performance from the Indian high jumper who dominated the competition for a major part of the final and spent much of the contest right at the top of the standings, eventually finishing second with a clearance of 2.25 meters. Silver for Sarvesh Koshari, silver for India.
1: जी बिल्कुल, कई पदक बिल्कुल पास आके चले गए, गोल्ड करीब आते आते चला गया, जैसे कहें कि होठों तक प्याला आके छलक गया। बिल्कुल एनसी और सर्वेश यहां गोल्ड जीत सकते थे, मामूली अंतर से उनसे गोल्ड छलक गया। बात करेंगे एथलेटिक्स में जिस तरह कामयाबी मिल रही, 13 अब तक पदक एथलेटिक्स से भारत को मिल चुके हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए इस एशियन गेम्स में, अगर आज के एक और पदक की बात कर लेते हैं, महिला 100 मीटर दौड़ की बात करें तो भारत की हरिता भद्रा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 23.20 सेकंड का समय निकालकर तीसरा स्थान पर रहते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर शानदार उपलब्धि हासिल की है। तेजस्विन ने कुल 7,934 अंक हासिल किए और तीसरे स्थान पर रहते हुए जापान के मारियामान ने वहीं पर 8,123 अंक के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि चीन के शिंगहुआ ने 8,012 अंकों के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। आपको बता दें 2022 में रजत पदक जीतने वाले यह एशियाई खेलों में यहाँ बता दें तो डेकथलॉन में उनका लगातार दूसरा पदक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर तेजस्विन अपना जो पदक का रंग बदलने से चूक गए, लेकिन हाँ लगातार दूसरे एशियन गेम्स में उन्होंने पदक जरूर जीता है।
0: Absolutely. Now another big medal moment for India in the women's 3000 meter steeplechase. Parul Chaudhary has done it, bronze for India. Parul finished third to secure a brilliant podium finish with Ankita finishing fourth. What a performance from Parul, holding her ground in a grueling final and bringing another athletics medal home for India.
1: बिल्कुल, पारुल ने एशियन गेम्स में जाने से पहले हमसे बातचीत में भी कहा था कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूंगी, ऐसा ही कर उन्होंने दिखाया भी, अपना बेस्ट किया उन्होंने। लेकिन यहां पर बॉक्सिंग की बात कर लेते विदुषी, एशियन गेम 2026 में बॉक्सिंग ने भी कई कमाल किए हैं। रिंग में भारत के लिए शानदार खबर है, भारतीय मुक्केबाज आज बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया 3 पदक पक्के कर लिए हैं, अंकुश पंघाल, प्रवीण और नरेंद्र ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीत लिए, सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। आज मुक्केबाजी के अंतिम मुकाबले का परिणाम बता देते हैं, पुरुषों के 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र ने थाईलैंड के अथापोंग सिथपेक के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करते हुए नरेंद्र ने यह मुकाबला आरएससी यानी रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के जरिए अपने नाम कर लिया, यानी बेहद जबरदस्त तरीके से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ नरेंद्र ने सेमीफाइनल में जगह बना ली और भारत के लिए तीसरा पदक पक्का कर लिया है।
0: Absolutely, as we said, this was some very spectacular last 90 minutes. Now moving across some more athletics results from the events that have taken place today. In the men's 800 meters, Mohammad Afzal finished third in round 1 heat 2, clocking 1 minute 47.37 seconds and advanced to the final. In heat 3, Krishan Kumar also finished third, recording a timing of 1 minute 50.338 seconds. Moving to the women's 100 meters hurdles final, Nandini finished 6th for India, clocking 13.45 seconds. There was no medal for India in this event.
1: विदुषी चलते-चलते हॉकी की खबर देते हैं। एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिंगापुर को 7-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। अगले एक घंटे में अब क्या घटेगा जरूर आज की अंतिम अपडेट में 7:30 पर बताएंगे। फिलहाल मुझे शाहिद आजमी और मेरे दोस्त विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

संदीप नाथ ने क्या ही खूब लिखा, कैलाश खेर, सपना मुखर्जी की आवाजें, कॉर्पोरेट, इस फिल्म से सुना आपने ये गाना। हाँ जी, आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। अंदाज़े बयां की महफिल सजी हुई है, जहां हम ऐसे ही गज़लें, कव्वालियां, सूफी सॉन्ग्स, एल्बम सॉन्ग्स आप तक पहुंचाते हैं। मतलब कि उस तरह के गाने जो कि आप दिन भर नहीं सुन पाते हैं। और मैंने आपसे कहा कि बहुत कम होता है कि मुझे इवनिंग शो मिले, और वो भी संडे का मिले, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अंदाज़ बयां में इतवार के लिए ही कुछ शेर व शायरी लेकर आई, जो हमारे बहुत ही मंझे हुए शायर हजरात ऑलरेडी कह चुके हैं। तो मैंने आपको मुनव्वर राना का शेर सुनाया, और अब सुनाते हैं आपको किशन लाल खंडन दहलवी जी क्या कहना चाहते हैं इतवार को लेकर। वो कहते हैं कि हफ्ते में है दिन सात मगर सात दिनों में सिर्फ एक ही इतवार है, मालूम नहीं क्यों। है ना, मालूम नहीं, हमें भी मालूम नहीं कि सिर्फ एक इतवार क्यों रखा गया है। और ये शेर जब मैं रीड कर रही थी तो मुझे वो गाने का भी ख्याल आया कि हफ्ते में चार शनिवार होने चाहिए, है ना। तो चार शनिवार तो खैर हो कि ना हो, पर चार इतवार, चार रविवार ज़रूर होने चाहिए, ऐसी दुआ हम कर सकते हैं। पर पता तो है कि इस तरह की दुआ जाके आसमानों से टकराएगी और वापस आ जाएगी। शंघाई, इस फिल्म से आएगा ये गाना। नंदिनी श्रीकर, अरिजीत सिंह, शेखर रवचियानी की आवाजें हैं। कुमार ने इसे लिखा, विशालन शेखर की कॉम्पोजिशन।

मुश्किल से आता है और उड़ जाता है, मुश्किल से आता है और उड़ जाता है। इस हफ्ते इतवार छुपा कर रखना तुम, भास्कर शुक्ला ने क्या ही खूब लिखा है और बिल्कुल सही कहा है। इतवार जो है वो बाकी दिनों से ऐसा लगता है बहुत जल्दी गुजर गया है ना, क्योंकि हम उस दिन को जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं, और जिस चीज़ को हम एंजॉय कर रहे होते हैं उसमें जो है वो वक्त गुजरने का पता नहीं चलता, और ऐसे ही पता नहीं चला वक्त गुजरने का और अंदाज़े बयां को यहीं रुकने का वक्त हो चला है। आपने अभी अभी जो गाना सुना वो आवारी, और ये था एक विलन इस फिल्म से, अदनान धूल, मोमिना मुस्तहसन की आवाज़ें थी। रब्बी अहमद, अदनान धूल ने इसको लिखा था, रब्बी अहमद और अदनान धूल की ही कॉम्पोजिशन थी। और जाते जाते इतवार के नाम एक और शेर हो जाए फिर हम इस आर का लास्ट जो गाना है वो भी आपको सुना देंगे। ओम अवस्थी लिखते हैं कि रहकर जमीन पे चांद के दीदार के लिए, रहकर जमीन पे चांद के दीदार के लिए, दफ्तर में दिन गुजारते हैं इतवार के लिए। हाँ जी बिल्कुल, दफ्तर के दिन गुजर रहे हैं हर किसी के एक इतवार की ख्वाहिश लेकर, और अंदाज़ बयां को यहीं रोकते हैं हम। आपको बता दें कि 7 बजे आप हमारे न्यूज़ स्टूडियो से मराठी में समाचार सुन पाएंगे, और 7:10 पर हम तुम ये आप ही का अपना चहिता प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। आपको मैं हम तुम में जो थीम है उसके बारे में अभी बता दूँ ताकि आप अपनी सॉन्ग रिक्वेस्टें भेजें, क्योंकि आज हमारा जो हम तुम ये प्रोग्राम है सिर्फ आधे घंटे के लिए जाएगा, आधा घंटा भी नहीं समझ लें 20 मिनट के लिए ही जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जिसकी सॉन्ग रिक्वेस्ट आएंगी मैं प्ले कर दूंगी, क्योंकि 7:30 एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है आधे घंटे का वो आने वाला है, इसलिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। 8657-6610-71-8657-6610-71 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजें। और सॉन्ग रिक्वेस्ट कौन सी भेजनी है, आपने भेजना है यश चोपड़ा साहब की फिल्मों के गाने। हाँ जी, क्योंकि आज यश चोपड़ा साहब की बर्थ एनिवर्सरी है, सो आज हमारा हम तुम ये प्रोग्राम यश चोपड़ा स्पेशल होगा। सो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट जल्दी से जल्दी भेजिएगा 8657-6610-71 पर, 8657-6610-71 ये व्हाट्सएप नंबर है। अभी के लिए अंदाज़े बयां से जाते जाते सुनाते हैं सैयो नी।

हर्षदीप कौर की आवाज में सुना आपने ये गाना। गुलजार साहब ने क्या ही प्यारे से लिखा है, ए आर रहमान की कॉम्पोजिशन जब तक है जहाँ, इस फिल्म से सुना आपने ये गाना। और यश चोपड़ा साहब ने जो आखिरी फिल्म डायरेक्ट की थी वो थी जब तक है जहाँ। आज यश जी की बर्थ एनिवर्सरी है, सो मैंने आपसे कहा है कि हम तुम इस प्रोग्राम में आपने यश चोपड़ा साहब की ही फिल्मों के गाने रिक्वेस्ट करने हैं, और क्या ही एक से बढ़कर एक गाने आ गए हैं मेरे पास ऑलरेडी। आपको बता दूँ कि 7:30 बजे तक ही ये प्रोग्राम जाएगा, उसके बाद एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है घंटे का, तो जल्दी से जल्दी अपनी रिक्वेस्ट भेजें 8657661071 पर, 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मैं हूं शर्मीन, आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, और हीद ये वाला गाना आपने सुना दीपा पालकर की रिक्वेस्ट पर। और आगे बढ़ते हैं, आगे जिस गाने की रिक्वेस्ट आई है वो है तेरे चेहरे से, ये गाना आपको सुनाते हैं हम कभी कभी इस फिल्म से। लता जी और किशोरदा की आवाजें हैं, साहिर साहब ने इसको लिखा, और हमें राकेश माथुर जी ने पुणे से और अरविंद कुलकर्णी जी ने इस गाने की रिक्वेस्ट की थी। फिरोज सिगनपुरिया जी ने भी हमें मैसेज किया था, तो उनके लिए भी ये गाना है। तो बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेन

हाँ जी, डर इस फिल्म से सुना आपने ये गाना, जो कि बिल्कुल भी डरा नहीं रहा था, बहुत ही हसीन सा था। उदित नारायण, लता दीदी की आवाज़ें, आनंद बख्शी साहब ने इसे लिखा था। आज हम तुम इस प्रोग्राम में मैंने आपसे मांगे हैं यश चोपड़ा साहब की फिल्मों के गाने, क्योंकि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। ये गाना हमें रिक्वेस्ट किया था पंकज मोहड़ और प्रणव शिंदे ने और विजेंद्र जी ने अकोला से। और एक इस जो हम तुम प्रोग्राम है उसका आखिरी गाना मैं प्ले कर रही हूँ, और ये गाना मैं प्ले करना चाहती हूँ आप सभी के लिए जिन्होंने मैसेजेस किए और उनके गाने आज प्ले नहीं हो पाए, क्योंकि सिर्फ आधे घंटे का हमारा प्रोग्राम जा रहा है। 7:30 बजे आपको बता दें आप एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुन पाएंगे, फार्म टू सिटी, और ये चलेगा पूरे आधे घंटे। और अभी जाते जाते अजय सकरे जी ने इंदौर से इस गाने की रिक्वेस्ट की है, लम्हे फिल्म से यश जी की एक और बेहतरीन मूवी, लता दीदी हरी जी की आवाजें हैं, आनंद बख्शी साहब ने इससे लिखा, शिव हरी की कॉम्पोजिशन में आएगा गाना कभी मैं कहूँ। और ये वाला गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के लिए जिनके गाने आज प्ले ना हो पाए, और आपके नाम ले लें हम, महाराजा कीर्तन जी और उनकी फैमिली, मुकेश कश्यप उनकी फैमिली, मेहर अरोरा जी, और भी कई सारे लोग जिन्होंने मैसेज किया था, संजय पाटिल जी, बलकरण वर्मा और उनकी फैमिली, विजेंद्र जी, दत्ता जी, और हमें मैसेजेस किसने भेजे हैं, हिरमानी वर्मा, दिग्दर्शन कविता, संजय दर्शन जी, वैदेही और आकांक्षा का हमें मैसेज आया था। ये गाना जो है आप सभी के लिए हम डेडिकेट करते हैं, और अब जा रही है शर्मीन, अपना ख्याल रखें सामईन।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते झाला. तसंच साबरमती स्थानकावरून त्यांनी देशातल्या पहिल्या एलएनजीवर चालणाऱ्या रेल्वेगाडीला हिरवा झेंडा दाखवून रवाना केलं. अमित शाह यांनी यावेळी जनसभेला संबोधित केलं. अमित शाह यांनी आज विश्व हिंदू परिषदेचे माजी अध्यक्ष दिवंगत अशोक सिंघल यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचं उद्घाटन केलं. अशोक सिंघल यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य हिंदुत्व, देश आणि समाजसेवेसाठी वाहून घेतलं होतं, असं शाह यावेळी म्हणाले. भारत कोणत्याही देशाच्या भूभागावर कब्जा करणार नाही, मात्र आमची सुरक्षा आणि धोरणात्मक स्वातंत्र्याला धोका उद्भवला तर त्याचं रक्षण करण्याकरता आम्ही कटिबद्ध आहोत, असं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी म्हटलं आहे. ते नवी दिल्लीत आयोजित एका कार्यक्रमात बोलत होते. भारताला जागतिक स्तरीय अपेक्षित असलं तरी ते धोरणात्मक स्वातंत्र्याची किंमत मोजून अपेक्षित नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. भारताविरोधात दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या कोणत्याही देशासोबत संवाद साधायचा प्रश्नच नाही, असंही ते म्हणाले. शाश्वत विकास, ग्रामीण रोजगार निर्मिती आणि प्लास्टिकला हरित पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्रानं बांबू आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करावी, असं आवाहन राज्यपाल जिष्णू देववर्मा यांनी केलं. ते आज मुंबईत बांबू आधारित अर्थव्यवस्था आणि शाश्वतता या विषयावरच्या शिखर परिषदेत बोलत होते. ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. दहशतवादाविरोधात भारताचं धोरण नेहमीच निर्णायक आणि स्पष्ट राहिलं असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं मन की बातमध्ये प्रतिपादन. महाराष्ट्रातल्या प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांची ग्वाही. दुष्काळासंदर्भात 12 उपाययोजना पंचनामे सुरू. दुष्काळग्रस्तांसाठी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे 17 मागण्या. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आज भारताला 4 रौप्य आणि 3 कांस्य पदकं. आणि एक दिवसीय क्रिकेट मालिकेतल्या पहिल्या सामन्यात वेस्ट इंडिजचं भारतापुढे विजयासाठी 296 धावांचं आव्हान, भारताची दमदार फलंदाजी, शुभमन गिलचं नाबाद शतक. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे राष्ट्रीय बातमीपत्र संपलं. नमस्कार.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया. कहा ये आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं. मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है. उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौते किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक. गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली एलएनजी चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया. इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया. एशियाई खेलों में भारत ने वुमेन्स लॉन्ग जंप, मेंस हाई जंप और स्क्वॉश सिंगल्स स्पर्धाओं में रजत पदक जीते. डेकाथनॉल, वुमेन्स स्टेपल चेज और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किए. और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी. ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है. सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं. आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा. श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी.
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा. आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है. पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी. अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है. श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल sec.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की. अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है.
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए

0: अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: श्री मोदी ने लोगों से मेढ़ोरा की गौरवशाली विरासत को देखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
0: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। यहां के किसान पीढ़ियों से आंवले की खेती करते आ रहे हैं। विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की महिलाएं आंवले से अचार और पाचक चूर्ण बना रही हैं। इन महिलाओं को प्रसंस्करण और ऋण की सुविधा मिली है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों से परे भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृह मंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री शाह ने कहा कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।
4: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता और 23

0: 2024 में 7188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7000 किलोमीटर की छलांग, 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
0: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि तकनीक किसी चिकित्सक के मानवीय स्पर्श और नैतिक जिम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकती। श्री राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में SUT एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: As we embrace technology, we must remember that one fundamental truth: technology can assist a doctor, but it cannot replace the human touch of a doctor. A machine can analyze, a robot can assist, but there is no comparison that human touch by a doctor to the patient. An algorithm can identify patterns, but patient still needs a doctor who can listen, understand, reassure and take the responsibility.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल की, कि कैसे इस संकल्प को वास्तविकता में बदला गया।
3: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
4: नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
3: नमो भारत में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया,
5: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है, एक डेवलपमेंट है मेरठ और यूपी के इतिहास।
3: नमो भारत का अलग अलग परिवहन साधनों के साथ सहज जुड़ाव भारत में तेज इंटरसिटी यात्रा को सुनिश्चित करता है और एकीकृत शहरी तथा क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है, जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अब रुख खेल खबरों का। एशियाई खेलों के हलचल के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
6: एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन ने डेकोथलॉन में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता।

0: जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नाना ग्रैंपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी है। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैंपेडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says surgical strikes, Balakot air strike and Operation Sindoor are bold examples of India's zero tolerance policy towards terrorism. In Mann Ki Baat program, Prime Minister highlights progress of Census 2027, saying data of over 32 crore families recorded so far. Also calls for greater public participation in cleanliness drives ahead of Mahatma Gandhi's birth anniversary. Defence Minister Rajnath Singh asserts India seeks global stability without compromising strategic autonomy. Union Minister Amit Shah flags off country's first LNG-powered train from Sabarmati in Gujarat, marking railway's shift towards cleaner energy. At Asian Games, India clinched silver medals in women's long jump, men's high jump and both squash singles, bags bronze in decathlon, women's steeplechase and 200-meter events, and India retained Nona Gaprina Dashavili trophy at Chess Olympiad in Uzbekistan, wins silver in open section and bronze in the women's event. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today. He said the surgical strikes carried out by the Indian Army on terrorist hideouts in Pakistan in 2016 demonstrated to the world a new approach to India's counter-terrorism policy. Mr. Modi said India will mark the 10th anniversary of the cross-border surgical strike tomorrow.
3: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: Speaking about Census 2027, Mr. Modi said the first phase of the ongoing exercise is nearing completion across all states and union territories. He said data from more than 32 crore families has already been recorded so far. He urged people to participate in the drive and use self-enumeration facility.
3: देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32

रोज भारतीय एथलीट जिद, जुनून, जतन और जुझारूपन की ऐसी कहानी रच रहे हैं जिसकी हर तस्वीर, हर मोड़, हर किरदार अपना सा लगता है। तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है तो जीत सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं लगती, पूरा भारत जश्न मनाता है। उनकी जतोजहद सिर्फ मैदान पर नहीं दिखती, उसकी तपिश हम सब तक पहुँचती है और जब मंजिल बस एक कदम दूर रह जाती है तो उसकी चूक की कसक हम सबको महसूस होती है। रविवार को भी ये सभी रंग, सभी जज्बात देखने को मिले। बॉक्सिंग रिंग में और हॉकी के मैदान पर जहां भारत का विजय रथ जारी रहा, तो वहीं एथलेटिक्स में भी अलग अलग इवेंट्स में हमारे एथलीट्स ने पदक जीते। स्क्वाश में कहानी टू नियर येट टू फार की रही, तो वॉलीबॉल और आर्चरी से दिल खुश करने वाले समाचार मिले। कुल भारत के लिए आज 7 पदक आए हैं और सबका विश्लेषण लेकर आकाशवाणी की टीम हाजिर है। मैं दर्पण क्या, आइए जानते हैं 27 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों ने क्या क्या गुल खिलाए। शुरुआत करते हैं एथलेटिक्स से, जहां आज भारत ने 5 पदक जीते। नागोया का मिजुहू पार्क एथलेटिक्स स्टेडियम आज भी बरसात के कारण तरबतर रहा, सतह गीली थी और इस वजह से खिलाड़ियों को संयम, संतुलन और तकनीकी दक्षता का परिचय देना था। हेडलाइन एक्ट रही एंसी सोजन, जिन्होंने महिलाओं की लॉन्ग जंप में भारत को रजत पदक दिलाया। एंसी की पहली जंप 6.49 मीटर की रही, जिसके बाद वो गोल्ड मेडल पोजिशन में लगा तार बनी रही। अपने 5वें अटेम्प्ट में उन्होंने 6.53 मीटर की दूरी तय कर उम्मीदें और पुख्ता कर ली, लेकिन अपने आखिरी अटेम्प्ट में चीन की यिंगयिंग हुआंग ने 6.56 मीटर की कूद लगा उन्हें पीछे छोड़ा और एंसी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसी प्रतियोगिता में भारत की शैली सिंह भी हिस्सा ले रही थी, जिनका बेस्ट अटेम्प्ट 6.42 मीटर का रहा और इसके चलते वो 4थे स्थान पर रही। दूसरा पदक आया पुरुषों की ऊंची यानी हाई जंप से, जहां भारत के सर्वेश कुशारे ने 2.25 मीटर की कूद लगाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। फिर पुरुषों की डेकेथलॉन में तेजस्विन शंकर ने 1974 के बाद इंडिया को पहला पदक दिलाया एशियन गेम्स में। कल का दिन खत्म होने पर तेजस्विन नंबर 1 थे, लेकिन आज सरक कर तीसरे पायदान पर आ गए और अंततः ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने गले में पहना। स्टैमिना और स्फूर्ति का परिचय पारुल चौधरी ने भी दिया। 3000 मीटर की महिलाओं की स्टीपल चेज में तीसरा पायदान प्राप्त कर पारुल ने दिलाया कांस्य पदक। लेकिन शायद एक सरप्राइज पैकेज बनकर उभरी भारत की हरिता भद्रा, जो महिलाओं के 200 मीटर में कांस्य पदक ले आई। 23.20 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी कर हरिता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी दौड़ में उन्नति बोलेंड भी शिरकत कर रही थी और उन्हें 6ठा स्थान प्राप्त हुआ। इसके अलावा एथलेटिक्स में कई और एथलीट्स ने अपने आप को पदक की दौड़ में बनाए रखा हुआ है। 400 मीटर बाधा दौड़ में पुरुषों में एस तमिल सरन फाइनल में पहुंच गए हैं, तो वहीं महिलाओं में विद्या रामराज भी फाइनल में शिरकत करते हुए नजर आएंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्री शंकर और डेविड पट्टूराज भी फाइनल का रास्ता तय कर चुके हैं। पुरुषों की 800 मीटर की दौड़ में मोहम्मद अफजल और कृष्णा कुमार भी फाइनल में खेलते हुए नजर आएंगे। महिलाओं की 4x100 मीटर रिले में तमन्ना, स्नेहा, सुदेशना और अभिन्या की चौकड़ी ने पहला स्थान प्राप्त कर अपना सीजन बेस्ट दिया और फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया। तो वहीं पुरुषों की 200 मीटर की दौड़ में अनिमेश खुजूर 5वें स्थान पर रहे और पदक से चूक गए। इस दौड़ में गीली सतह होने के बावजूद थाईलैंड के पुरीपोल बुनसोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक नया एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किया और केवल 19.88 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी की। वो बने स्वर्ण पदक विजेता। 3 पदक बॉक्सिंग रिंग में भी आज सुनिश्चित हुए और बताते हैं

0: चाईदास भी।
1: एशियन गेम 2026 में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए शानदार खबर है। भारतीय मुक्केबाजों ने आज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 और पदक पक्के कर लिए हैं। अंकुश पंघाल, परवीन और नरेंद्र ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के अंकुश पंघाल ने ताजिकिस्तान के नेक्रुस सलीमोव को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। अंकुश ने पूरे मुकाबले में प्रभावी प्रदर्शन करते हुए निर्णायकों को प्रभावित करते हुए स्पष्ट जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अंकुश ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है और भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमोव को 5-0 से मात दी। परवीन ने मुकाबले के 3 राउंड में अपना दबदबा बनाए रखा। जीत के साथ ही उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए एक और पदक पक्का कर लिया। पुरुषों के 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र ने थाईलैंड के अत्थापोंग सेकतेप के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। नरेंद्र ने मुकाबला RSC यानी रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के जरिए अपने नाम किया। इस जीत के साथ नरेंद्र भी सेमीफाइनल में पहुंच गए और भारत का 3रा पदक भी सुनिश्चित कर लिया। हालांकि पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के सचिन सिवाच को निराशा हाथ लगी। सचिन को जापान के शुनसुके किटामोतो ने 5-0 से हराया। इसके साथ ही सचिन का एशियन गेम्स अभियान क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाया। इस तरह बॉक्सिंग में आज भारत ने 3 और पदक पक्के किए, अंकुश, परवीन, नरेंद्र। अब सेमीफाइनल में पदक का रंग बदलने के इरादे से ये तीनों खिलाड़ी रिंग में उतरेंगे।
0: Much like this, 2 medals were confirmed earlier in squash as well. Youngsters Abhay Singh and Anahat Singh had made it to the singles final and assured at least a silver medal for themselves yesterday. Today, they featured in their respective gold medal matches. First was Abhay Singh in the men's singles final where he went down to Malaysia's Yan Yeo. Then, teenage prodigy Anahat Singh also suffered the same fate against a Malaysian opponent. Both these players missed out on not just the gold medal, but also on a direct qualification to the LA 2028 Olympics. However, at the end of the day, they wore the silver medal that they had won with pride, and it is just the beginning of something special in Indian squash. India have won its most medals in the shooting range in this year's Asian Games. What happened on Sunday? Vidushi Vats with the report.
2: Starting with the women's trap competition, Neeru Dhanda continues to be one of the standout performers for India. She's currently sitting at number 1 in the individual standings, hitting 48 out of 50 targets. There is also good news in the team competition. The Indian women's trap team has finished day 2 in second position, keeping themselves firmly in medal contention as the event moves towards its final stage. Ashma Ahlawat is currently placed 16th individually. Moving to the men's trap event, Kainan Chennai made a brilliant start, producing a perfect opening round by hitting all 25 targets. He followed that with 22 in the next round and is currently placed 11th individually. Shapath Bhardwaj is currently in 22nd position, while the Indian men's team finished day 1 in 7th place in the team standings. And now, moving from trap to pistol, the Indian women have completed the precision qualification in the 25-meter pistol event. Esha Singh is leading the Indian challenge at this stage. She finished the precision qualification with 290 points, putting her in 6th position. Rahi Sarnobat and Manu Bhakar are next for India, both finishing on 287 points. Rahi is currently placed 15th, while Manu is at 16th. Importantly, this is not the end of the 25-meter pistol competition. There is still more action to come, with the Indian trio looking to build on these scores as the event progresses.
0: दूसरी तरफ हॉकी के मैदान में भारतीय टीम का विजय रथ जारी रहा। हम बात कर रहे हैं महिलाओं की। महिला टीम ने सिंगापुर के खिलाफ 7-0 से जीत पा इस बात को सुनिश्चित किया कि वो ग्रुप स्टेज पर अजय रहे और सर्वश्रेष्ठ स्थान पर अपना ग्रुप स्टेज कैंपेन अंत करे। अब सेमीफाइनल में सामने होने वाली है दक्षिण कोरिया। कुछ इसी तरह के संकेत आर्चरी रेंज से भी देखने को मिले हैं। विदुषी बताती हैं।
2: इन द मेंस रिकर्व टीम क्वार्टर फाइनल, धीरज, नीरज एंड यशदीप प्रोड्यूस्ड अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अगेंस्ट चाइना, विनिंग 5-2 टू बुक देयर प्लेस इन द सेमीफाइनल्स। द वुमेन्स रिकर्व टीम ऑफ अंकिता, कुमकुम एंड कीर्ति डिफीटेड चाइनीज ताइपी 6-0 इन देयर क्वार्टर फाइनल टू मार्च इनटू द लास्ट 4। एंड इंडियाज मिक्स्ड रिकर्व टीम ऑल्सो मेड इट थ्रू। धीरज एंड कुमकुम हैव बीन क्लिनिकल थ्रू आउट द नॉकआउट स्टेज। दे बिगन विद 6-0 victory over the United

0: Arab Emirates in the round of 16 and followed that up with another commanding 6-0 win over Vietnam in the quarter-final, and now have a semi-final against Japan to look forward to. So in recurve, India has three teams through to the semi-finals. The men's team will face Iran, the women's team will take on China, and the mixed team will face Japan. These three recurve semi-finals are scheduled for October 2nd. But the good news from Indian archery does not stop there. The compound teams have also delivered across the board, with India reaching the semi-finals in the men's, women's and mixed team events. In the men's compound team quarter-final, Sahil, Ganesh and Kushal edged past Bhutan 235-232 in a closely fought contest. The women's compound team of Chikita, Jyoti and Pritika also booked their semi-final place, defeating Kazakhstan 233-230. And there was another impressive performance in the compound mixed team event by Chikita and Sahil, who first defeated Mongolia 161-46 in the round of 16 before overcoming Kazakhstan 159-154 in the quarter-final. They are now through to the semi-finals, where they'll face Thailand. The compound men's and women's team will both face South Korea in the semi-finals. These three compound semi-finals are scheduled for September 30. All in all, it has been an absolutely fantastic day for Indian archery.
1: हालांकि बैडमिंटन कोर्ट से हताश करने वाली खबर है, मोहम्मद शाहिद आजमी से जानते हैं।
2: एशियाई खेलों में बैडमिंटन के लिहाज से भारत के लिए आज का दिन बेहद निराशाजनक रहा। व्यक्तिगत स्पर्धाओं के क्वार्टर फाइनल में भारत के चारों मुकाबले हार के साथ समाप्त हुए और इसी के साथ बैडमिंटन में भारत की पदक की चुनौती भी खत्म हो गई। महिला एकल में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को चीन की विश्व नंबर 4 और ओलंपिक चैंपियन चेन यू फेई ने 3 गेम के मुकाबले में हराया। चेन यू फेई ने सिंधु को 21-11, 18-21, 21-10 से शिकस्त दी। करीब 75 मिनट तक चले मुकाबले में सिंधु ने दूसरा गेम जीतकर शानदार वापसी की, लेकिन निर्णायक गेम में चेन यू फेई ने बढ़त कायम रखते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। महिला एकल के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में 19 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने अपने एशियाई खेल पदार्पण पर जापान की 3 वर्ग विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को कड़ी चुनौती दी। उन्नति ने दूसरा गेम अपने नाम किया, लेकिन निर्णायक गेम में उन्हें 16-21, 21-14, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। महिला डबल्स में टीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी मलेशिया की पोली टैन और थीना मुरलीधरन से 18-21, 9-21 से हार गई। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रस्टो को चीन की फेंग यांग झे और हुआंग डोंग पिंग ने कड़े मुकाबले में 14-21, 21-18, 18-21 से हराया। इस तरह एशियाई खेलों में बैडमिंटन में भारत की चुनौती, एक कांस्य पदक जो पुरुष टीम वर्ग में मिला था, इसके साथ समाप्त हो गयी।
1: फिर चलते हैं वॉलीबॉल की ओर, जहां पर भारतीय टीम ने पुरजोर आगाज किया है। बताते हैं आलोक,
3: भारतीय टीम जो आखिरी बार 1986 के सियोल एशियाई खेलों में पोडियम पर रही थी, ने पूल सी में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। कप्तान जोरम चार्ल्स के नेतृत्व में भारतीय टीम ने शुरुआती मैच में 58वीं रैंक वाली वियतनाम टीम को 3-0 से हराया। हालांकि पहला सेट बेहद करीबी रहा, लेकिन भारतीय टीम ने पहले सेट को 25-23 से जीता। दूसरे सेट में भारतीय टीम 25-21 से जीत करके मुकाबले में भारतीय टीम 2-0 से आगे होगी, और तीसरे सेट में भारतीय टीम 25-20 से जीत करके इस मुकाबले को 3-0 से अपने नाम किया। सर्बियाई कोच ड्रैगन महलोविक के मार्गदर्शन में खेल रही भारतीय टीम का अगला मुकाबला कल सुबह 6:30 भारतीय समय अनुसार हांगकांग से होगा।
1: वॉलीबॉल जैसा ही एक रोमांचक खेल है सेपेक टेक्रो, वहाँ भारतीय टीम का आज प्रदर्शन कैसा रहा, आइए जानते हैं।
0: India have had a difficult day in Group B. India began their women's doubles campaign against South Korea but went down 0-2. India were back on court later in the day for their second Group B encounter, this time against the Philippines. And the Philippines came away with another straight games victory. So India have now suffered 2 defeats in 2 Group B matches, losing both encounters 0-2. It has certainly been a challenging start for the Indian pair in the women's doubles. India will now look to their remaining group commitments as they aim to keep their campaign alive and finish strongly.
1: इसके बाद चलते हैं भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग की ओर।
2: एशियाई खेलों में महिला वेट लिफ्टिंग के 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की हरजिंदर कौर 9वें स्थान पर रही। हरजिंदर ने कुल 204 किलोग्राम वजन उठाया। स्नैच में उन्होंने 94 किलोग्राम का सफल प्रयास किया। इसके बाद क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 110 किलोग्राम का वजन सफलतापूर्वक उठाया। इस तरह हरजिंदर का कुल स्कोर 204 किलोग्राम रहा। उन्होंने प्रतियोगिता में 9वें स्थान पर रहते हुए अपना अभियान समाप्त किया। इस स्पर्धा में उत्तर कोरिया की सोंग गुक हॉन्ग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 273 किलोग्राम

0: उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चीनी ताइपे की चेन वेन हुई ने कुल 232 किलोग्राम के साथ रजत, जबकि बहरीन की इंग्रिड गुएसो ने 229 किलोग्राम के साथ कांस्य पदक हासिल किया।
1: फाइट स्पोर्ट कुराश में भारतीय खिलाड़ियों का आज प्रदर्शन कैसा रहा, आइए जानते हैं।
2: इन द मेंस प्लस 90 किलोग्राम कैटेगरी यश कुमार चौहान लॉस्ट हिज राउंड ऑफ 16 बाउट 0-10-2 ताजिकिस्तान्स मिरमामादोव, व्हाइल विशाल डिड मेक इट थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स इन द सेम कैटेगरी बट हिज कैंपेन एंडेड देयर आफ्टर अ 0-5 लॉस टू थाईलैंड्स ये ऑन। इन द वुमेन्स 57 किलोग्राम कैटेगरी संगीता वॉज बीटन 0-10 बाय द फिलीपींस क्वेलिनो इन द राउंड ऑफ 32। Bharti also went out in the round of 16, losing 0-3 to Iran's Tahere. So, four Indian Kurash athletes in action today and all four have now been eliminated.
1: Moving on to fencing.
2: India's women's sabre team saw their Asian Games campaign come to an end in the quarterfinals. The Indian team, featuring Bhavani Devi, Shreya Gupta, Jafarlin J.S. and Shruti Joshi, began the team event with a convincing 45-23 victory over Indonesia in the round of 16. They then put up a strong fight in the quarterfinals but went down 35-45 to Uzbekistan in the last eight. So, India's women's saber team finishes its campaign at the quarterfinal stage, just missing out on a place in the semi-finals.
1: अन्य खेलों का लबोलुभाव लेकर आलोक।
3: व्यक्तिगत घुड़सवारी ड्रेसेज इवेंट में हृदय विपुल छेरा ने 72.680 और उनके साथी जयसूद ने 71.490 का स्कोर किया। वो क्रमशः 8वें और 9वें पायदान पर रहे। दोनों राइडर्स क्वालिफिकेशन राउंड तक से फाइनल तक पहुंचे थे लेकिन कोई मेडल नहीं जीत पाए। गौरतलब है कि इससे पहले 2022 के एशियाई गेमों में भारत के लिए अनुषा अग्रवाल ने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं बात करते हैं सर्फिंग की। पहली बार एशियाई खेल में शामिल किए गए सर्फिंग से आज भारत के लिए मिक्स रिजल्ट रहा। मेंस शॉर्ट बोर्ड में भारत के किशोर कुमार अबारसु राउंड में 9.33 स्कोर के साथ पहले स्थान पर क्वालिफाई किया। राउंड टू में उन्हें बाय मिला। तीसरे राउंड में उनका मुकाबला चीन के वेंग सॉन्ग से होगा। शिवराज बाबू ने 7.03 का स्कोर किया और राउंड टू में उनका मुकाबला था आज ईरान के दाऊद खादिर के साथ। उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है 8.96 के मुकाबले 3.60 के स्कोर के साथ। तीसरे राउंड में उनका अगला मुकाबला फिलीपींस से होगा। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं वुमेन्स शॉर्ट बोर्ड में। कामली प्रकाश और शांति गोयन ने राउंड टू का मुकाबला जीता लेकिन राउंड तीन में वो अपना मुकाबला हार। इस प्रकार एशियन गेम्स से उनका सफर खत्म हो गया है। दोनों भारतीय खिलाड़ी 9वें पायदान पर रहे।
1: इसके बाद भारत 4 गोल्ड 16 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ कुल 37 मेडल लेकर 12वें स्थान पर है। चीन पहले, जापान दूसरे तो दक्षिण कोरिया तीसरे पर। अब बात करते हैं कल की। सोमवार 28 सितंबर को भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होने वाली है क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम आगाज करने वाली है अपने कैंपेन का। क्वार्टर फाइनल में सामने होगी अफगानिस्तान की चुनौती और बारिश के चलते टीम को अभ्यास करने का ज्यादा मौका मिला नहीं है। उसके बावजूद कप्तान श्रेयस अय्यर कहते हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं।
4: इस बारिश है वो तो हम रीजन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि वी आर अ बंच ऑफ प्रोफेशनल्स एंड ऐसे सब हर्डल्स आते रहेंगे और हमें मेंटली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशन इज गोइंग टू बी। प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज टू कम एंड प्ले द मैच। यहाँ का विकेट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में नहीं सेट हो सकता है बट जैसे कि मैंने कहा पहले कि अडैप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजिंग तो होगा ही, डिफिकल्ट होगा, हर एक टीम के लिए होगा।
1: हॉकी के मैदान पर भारतीय पुरुष टीम खेलने वाली है अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला बांग्लादेश के विरुद्ध। सेमीफाइनल से पहले मोमेंटम बरकरार रखने के लिए ये मुकाबला है जरूरी। तो वहीं बॉक्सिंग रिंग में उतरने वाले हैं कपिल और प्रिया घंगस अपनी अपनी क्वार्टर फाइनल बाउट में। इसके साथ ही ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन पर भी नजरें होंगी। देन इन द आर्चरी रेंज इंडिविजुअल कॉम्पिटिशंस विल स्टार्ट। वी विल हैव आवर आईज ऑन मेन एंड वुमेन फ्रॉम बोथ रिकर्व एंड कंपाउंड आर्चरी। इन एथलेटिक्स गुलवीर सिंह एंड यूनुस शाह विल बी फाइटिंग फॉर अ मेडल इन द 1500 मीटर मेंस रेस। मीनवाइल पारुल चौधरी हु वन अ गोल्ड मेडल इन द 5000 मीटर इन द प्रीवियस एशियन गेम्स विल बी कम्पीटिंग टुमारो। इन द लॉन्ग जंप फाइनल मुरली श्रीशंकर एंड डेविड पट्टूराज विल बी फीचरिंग। बाधा दौड़ में 400 मीटर में पुरुषों में तमिला विद्या सरन तो महिलाओं में विद्या रामराज फाइनल खेलेंगी। भारत की मिक्स रिले टीम भी 4x100 मीटर की दौड़ में फाइनल खेलते हुए नजर आएंगी। सीमा विल ऑल्सो फीचर इन द विमेन्स डिस्कस थ्रो फाइनल। तो वहीं पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में सूबेदार अविनाश साबले शिरकत करते हुए दिखेंगे। इन शूटिंग आईज विल बी

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवादी विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल sec.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृहमंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 एशियाई खेलों में पुरुष सिंगल्स और स्क्वैश और महिला सिंगल्स स्क्वैश में रजत पदक जीतने पर अभय सिंह और अनाहत सिंह को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अभय सिंह की यह उपलब्धि उनके वर्षों के कठिन परिश्रम, कौशल और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने अनाहत सिंह के शानदार प्रदर्शन की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने महिला लंबी कूद में रजत पदक जीतने पर NC जो सोजन को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके दमदार और उत्साहपूर्ण प्रदर्शन से देश को खुशी मिली है। श्री मोदी ने महिला 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर हरिता भद्रा को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह हरिता भद्रा का पहला एशियाई खेल है और उन्होंने आत्मविश्वास तथा दृढ़ संकल्प के साथ दौड़ लगाकर पदक अपने नाम किया। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना गैपरिनडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर देश को कांस्य पदक दिलाया। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली 88 गेंद में 139 रन बनाकर नाबाद रहे। यह उनके एक दिवसीय क्रिकेट का 55वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का 86वां शतक है। शुभमन गिल ने भी 110 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज की रात थोड़ी भीगी भीगी सी है, हवाओं में ठंडक है, बादलों में नमी है और दिल में शायद किसी की कमी। कहते हैं ना, मौसम जब करवट लेता है तो दिल भी कुछ पुराने पन्ने खोलने लगता है। बारिश की बूंदें सिर्फ जमीन को नहीं भिगोती, कई अधूरी यादों को भी जगा देती हैं। और इस खूबसूरत रात में अगर बात मौसम की रोमानियत की ना की जाए तो फिर किसकी की जाए, क्योंकि गजलों में मोहब्बत, इश्क, ये तमाम ऐसे लफ्ज़ हैं जो आ ही जाते हैं बार बार।

आप सुन रहे हैं रंगी महफिल जरी के संग। बारिश का मौसम ना कुछ कुछ अजीब सा होता है। किसी के लिए चाय और पकौड़े की खुशी, तो किसी के लिए किसी खास के साथ बिताए लम्हों की यादें। आपने कभी गौर किया है, जब बारिश की पहली बूंद गिरती है तो दिल अपने आप किसी ऐसे इंसान को याद करने लगता है जिससे शायद अब बात भी नहीं होती। खिड़की के पास बैठकर ये सोच तो नहीं आती कि काश वो इस वक्त मेरे साथ होता। खैर, होता ये है साहब कि अगर किसी रिश्ते को आप मुकम्मल मुकाम पर नहीं ले जा सकते तो किसी खूबसूरत मोड़ पर उसे छोड़ देना चाहिए। उसी में समझदारी होती है।

सुन रहे रंग महफिल जरी के संग। मौसम भले ही बदलते रहे, कभी बरसात का मौसम, कभी गर्मी का मौसम और कभी सर्दी का मौसम, यूं तो कुछ दिनों के बाद या कहें कि महीने भर बाद सर्दी का आगाज हो जाएगा और सर्दी अपने पूरे शबाब पर होगी। लेकिन कहना मेरा बस ये है कि मौसम भले ही बदलते रहे मगर कुछ एहसास हमेशा दिल में ठहर से जाते हैं। ऐसी रुमानियत को अपने दिल में हमेशा जिंदा रखिए, कभी भी निकलने मत दीजिए, क्योंकि पता है हम इंसान ना बहुत मशीनी होते जा रहे हैं। वही सुबह उठना, घर का काम, दफ्तर का काम, ट्रैफिक की झंझट, परिवार और रिश्ते की चिक चिक। ऐसे में कुछ एहसास, कुछ पल, कुछ यादें, कुछ रिश्ते अगर आपने दिल में संजो कर रखे हैं ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 11:22 मिनट।

आसपास हर जगह बेशुमार आदमी है। भीड़ इतनी कि चेहरों का हिसाब रखना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। लेकिन अजीब बात है ना, कि इसी भीड़ के बीच इंसान सबसे ज्यादा अकेला पाता है खुद को। किसी के हाथ में मोबाइल है, किसी के कानों में ईयरफोन, किसी की जिंदगी ऑनलाइन है, पर दिल अब भी किसी अपने की आवाज ढूंढता है। कभी सोचा है आपने कि आखिरी बार बिना किसी वजह के कब किसी का हाल पूछा था आपने? शायद हम बातें करना भूल गए, कुछ सुनना भूल गए, शायद रिश्ते अब टाइप किए जाते हैं, महसूस कम किए जाते हैं। क्या मानते हैं आप?

0: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

खैर, तन्हाई हमेशा हमारी दुश्मन नहीं होती, कभी कभी वही हमें खुद से मिलवाती है। तो फिर मिलेंगे एक नई महफिल, एक नए एहसास के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शब खैर।

बहुत ही खूबसूरत शो रंगे महफिल जरीन थी हमारे साथ, लेकिन अब क्योंकि सिग्नल हो गया 0000 का, और ये सिग्नल सीधे सीधे बताता है, इंगित ही देता है, संकेत करता है जीरो आवर शो का। यानी अब दिन बदल चुका है, वक्त बदल चुका है और शो भी लिहाजा बदलेगा ही, लेकिन उससे पहले क्या क्या बदला है, यानी अब तक के मुख्य समाचार क्या है, इस पर ज़रूर डालेंगे।

फटाफट से नजर मेरे यानी रजत के साथ बस कुछ ही क्षणों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि यह आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा जरूर करेगा। भारतीय वायुसेना ने जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर अभ्यास तरंग शक्ति 2026 का परिचालन चरण शुरू किया। यह अभ्यास अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। इसमें 7 मित्र देश ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में आज पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी गई है। नोटिस और दावे आपत्तियों के निपटारे का काम 30 नवंबर तक चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। दिल्ली के सभी मतदाता केंद्रों पर नए मतदाताओं के नामांकन के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस महीने की 29 और 30 तारीख को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में भी कैंप आयोजित किए जाएंगे। एशियाई खेलों में भारत ने महिला लंबी कूद, पुरुष ऊंची कूद और दोनों स्क्वाश स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथलॉन महिला, स्टीपल चेज और 200 मीटर स्पर्धाओं में कांस्य पदक भी हासिल किए। भारत ने 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक जीते और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर। साथ ही साथ आप जुड़े हैं हमारे साथ हमारी ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी। तो करते हैं आगाज खूबसूरत प्रोग्राम जीरो और शो का मेरे यानी रजत के साथ इन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर और उस ऐप पर भी जिसका मैंने अभी नाम लिया। अगर अभी तक ये ऐप आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्दी से डाउनलोड कीजिए और बन जाइए हमारे साथी देश और दुनिया के हर हिस्से, हर कोने से। आप सभी का स्वागत जीरो और शो में मेरे यानी रजत के साथ।

0: boli.
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

खूबसूरत गानों के इस पड़ाव के बाद, यानी इस आखिरी पड़ाव, ये जो गाना आप सुनने जा रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब की आवाज में, इसके बाद फिर से चलेंगे बुलेटिन और फिर आप सुनेगा सुहानी रात अर्जित के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। रात्रि के 1 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने इसकी पुष्टि की। यह फैसला भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। भारतीय वायुसेना ने जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर अभ्यास तरंग शक्ति 2026 का परिचालन शुरू किया। यह अभ्यास अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। इसमें 7 मित्र देश ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश भाग ले रहे हैं। पंजाब के फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU के छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। छात्र कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में आज पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर

अक्टूबर की गई नोटिस और दावे आपत्तियों के निपटारे का काम 30 नवंबर तक चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर नए मतदाताओं के नामांकन के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस महीने की 29 और 30 तारीख को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में भी कैंप आयोजित किए जाएंगे। एशियाई खेलों में भारत ने महिला लंबी कूद, पुरुष ऊंची कूद और दोनों स्क्वाश एकल स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथलॉन महिला स्टीपचेंज और 200 मीटर स्पर्धाओं में कांस्य पदक हासिल किए। भारत ने 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य पदक सहित 37 पदक जीते। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल के साथ। 1:03 हो चुके हैं और रोजाना की तरह अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सुहानी रात। और आज एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: 1:17 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम सुहानी रात मेरे यानी अर्चित के साथ।

1:29 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम सुहानी रात मेरे यानी अलचित के साथ।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

बागों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

1:52 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहानी रात। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

बजने को है और वक्त हो चला है मुख्य समाचारों का। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने इसकी पुष्टि की। यह फैसला भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा जरूर करेगा। भारतीय वायुसेना ने जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर अभ्यास तरंग शक्ति 2026 का परिचालन चरण शुरू किया। यह अभ्यास अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। इसमें 7 मित्र देश ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश भाग ले रहे हैं। पंजाब के फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU के छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। छात्र कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में आज पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 अक्टूबर की गई। नोटिस और दावे आपत्तियों के निपटारे का काम 30 नवंबर तक चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर नए मतदाताओं के नामांकन के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। इस महीने की 29 और 30 तारीख को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में भी कैंप आयोजित किए जाएंगे। एशियाई खेलों में भारत ने महिला लंबी कूद, पुरुष ऊंची कूद और दोनों स्क्वाश एकल स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथलॉन महिला स्टीप लचेज और 200 मीटर स्पर्धाओं में कांस्य पदक हासिल किए। भारत ने 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक जीते और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा आप जुड़े हमारे साथ हमारी ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी। देश और दुनिया के हर हिस्से से हमारे प्रोग्राम्स का आनंद लेने के लिए इस ऐप को आज और अभी डाउनलोड करें। 2:02 बल्कि कहना चाहिए कि अब 3 मिनट हो चुके हैं। कुछ ही देर में पहुंचेंगे हम उस पड़ाव पर जो कि 2 बजे से 3 बजे तक का बड़ा मनोरंजक पड़ाव होता है और इसका नाम है भुलाए ना बने। आप और हम रहेंगे इस खास और खूबसूरत महफिल में, खूबसूरत गानों के साथ, यादगार संगीत के साथ, जिसे ना आप भूल पा रहे हैं ना हम कोशिश करेंगे तब भी ये भुलाए ना बने। ये बनेगी ही नहीं बात, इसलिए रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। रात्रि के 3 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने इसकी पुष्टि की। यह फैसला भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। भारतीय वायुसेना ने जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर अभ्यास तरंग शक्ति 2026 का परिचालन चरण शुरू किया। यह अभ्यास अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। इसमें 7 मित्र देश ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश भाग ले रहे हैं। पंजाब के फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU के छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। छात्र कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में आज पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। दिल्ली में इस महीने की 29 और 30 तारीख को सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में नए मतदाताओं के नामांकन के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। एशियाई खेलों में भारत ने महिला लंबी कूद, पुरुष ऊंची कूद और दोनों स्क्वाश एकल स्पर्धा में रजत पदक जीते। डेक्लाथलॉन महिला स्टीपल चेंज और 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किए। भारत ने 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक जीते। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 3:03 हो चुके हैं और अब समय है आपके पसंदीदा का।

कार्यक्रम जिसका नाम है मिडनाइट मेलोडीज, और इसमें एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं अलका याग्निक जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत।

조립감 기반 रेनबो की सौगात हर रोज जुड़िए हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर ऑलवेज वेयर एवर यू आर 102.6 आपके लिए

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

3:56 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

मिडनाइट मेलोडीज अभी आपने सुना और इसके बाद बज चुके हैं चार और ये वक्त है आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचारों का। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2000 रुपए से अधिक के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने का निर्णय लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली एलएनजी चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। भारतीय वायुसेना ने जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर अभ्यास तरंग शक्ति 2026 का परिचालन शुरू किया। ये अभ्यास चरण अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। इसमें 7 मित्र देश ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश भाग ले रहे हैं। पंजाब के फागवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू के प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। छात्र कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में आज पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। एशियाई खेलों में भारत ने महिला लंबी कूद, पुरुष ऊंची कूद और दोनों स्क्वाश एकल स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथलॉन, महिला स्टीपल चेज और 200 मीटर स्पर्धाओं में कांस्य पदक हासिल किए। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हम उपलब्ध हैं। देश और दुनिया के हर कोने हर हिस्से से जुड़ने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल कीजिए। आप जुड़े हमारे साथ ठीक 4:02 पर और वक्त हो गया है कार्यक्रम सारेगामा का। सारेगामा के इस अंक में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका मित्र रजत। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और खूबसूरत गानों से सजी इस महफिल में आप का स्वागत और आप सभी का इस्तेमाल करता हूं मैं रजत।

0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
2: आज की रात मजा,
1: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।